नमस्कार, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18 तारीख, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है First in my bloodline to make a chip in India।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर

0: में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। श्री अरविंद का कथन है, सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों को क्यों प्यार करता है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा सुबह 6:45 पर। पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में सुबह 7:00। सुबह 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा पहले सुबह 8:15 पर और फिर दिन में 2:00। कार्यक्रम चित्रलोक प्रसारित किया जाएगा पहले सुबह 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार सुनिए सुबह 9:30 पर। सुबह 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो चंडीगढ़। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा सावन के झूले पड़े। सुबह 11:00 कार्यक्रम सुनिए यादों का कारवां। आज इस के अंतर्गत आप सुन सकते हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में बचपन में अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके और नेत्रदान द्वारा आंखों की रोशनी दोबारा पा चुके श्री इंद्रपाल के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे, आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे मनचाहे गीत कार्यक्रम में 3:00। बाद दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में नाटक सुनवाया जाएगा। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम नॉन स्टॉप नगमे। शाम 7:00 विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। रात 9:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा कानून और न्याय मंत्रालय। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। और रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
1: अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 275।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 275।
1: संगीत सरिता।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल हम सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा और हमारी अतिथि कलाकार हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोता मित्रों, कल हमने शुभा जी से दो राग सुने, चंद्रमल्हार और अरुण मल्हार। शुभा जी, ये दोनों राग प्रचलन में तो मतलब ज्यादा कर
1: नहीं, इतने ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेंगे इतने, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब और किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि इसी प्रकार के जो मिश्रित राग हैं वो ऐसे इतने असंख्य हैं कि जरूर, वैसे तो भातखंडे जी की किताबों में भी इन रागों की चर्चा है
0: जी।
1: तो अवश्य बंदिशें होंगी पर मुझे जो मिली हैं वो ये बंदिशें मिली।
0: तो ये हम ये कहें कि ये अक्षोभ राग ही है जैसे
1: एक तरह से।
0: तो श्रोता मित्रों, कुछ अक्षोभ बंदिशें और राग हमने सुने हैं और आज अब फिर शुभा जी की तरफ मैं बढ़ती हूँ और उन्हीं को पूछती हूँ।
1: मुझे लगता है कि हम क्यों ना अब ठुमरी दादरा की ओर चलें, आपका क्या ख्याल है?
0: ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है।
1: तो एक दादरा मुझे याद आ रहा है जो कि काफी सुना होगा लोगों ने, लेकिन उसका जो साहित्य है वो ऋतु संबंधी है, वर्षा ऋतु संबंधी है और बहुत खूबसूरत है।
0: वैसे दादरा ताल में जो गाई जाती है रचनाएं
1: जी,
0: उन्हीं को दादरा कहेंगे?
1: दादरा ताल में भी गाई जाती हैं और कुछ कुछ कहरवा ताल में भी गाई जाती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा करने की कोशिश की है और एक जो परिभाषा है वो ये है कि दादुर की जो गति है उससे मिलता जुलता जो एक लचक उस गीत में है,
0: ठुमक,
1: वो हाँ ठुमक है, वो दादरे में मिलती है और ठुमरी में विस्तार का की जगह ज्यादा मिलती है। गति भी उसकी कई बार दादरे से ज्यादा थमी हुई होती है, लेकिन हमेशा ऐसे कह देना कि नहीं यही सही है हमारे संगीत में जरा कठिन होता है
0: जी।
1: तो ये दादरा, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें
0: जी।
1: भीगी जाऊं मैं गुइया, हाँ, बचाए लइयो।
0: अच्छा,
1: क्यों बचाए लइयो, किस चीज से बचाए लइयो? झरन लागी बदरिया गुइया,
0: हाँ?
1: भीगी जाऊं मैं गुइया, बचाए लइयो। ये स्थाई है इसका। और कंचुकी मोरी भीजत सारी, लाज आवत देखत नारी, शर्मीली है। बिनती करो करहूं छुपाए लइयो गुइया, बचाए लइयो, भीगी जाऊं मैं गुइया, बचाए लइयो।
0: जी, श्रृंगार का कितना अनूठा और तरल सा एक भाव है इसमें, बहुत ही सुंदर। लेकिन शुभा जी, एक सवाल मेरे मन में और है
1: जी।
0: दादरा जिसे कहा जाता है उसमें जो शब्द होते हैं, जो पद कहूं या बंदिश कहूं
1: जी,
0: तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं?
1: जी हाँ, बहुत मतलब दादरा आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें होली का वर्णन मिले, आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें विरह का वर्णन मिले, ऐसा भी मिलेगा जिसमें के छेड़छाड़ की बात हो, बरजोरी की बात हो, वो भी है। और ऋतु संबंधी भी चीजें हैं जिसमें कि एक एक अनोखा एक नखरा सा है। यूं तो ऐसे कोई भीग जाता है तो ऐसी तो बड़ी बात नहीं है, पिघल नहीं जाएगा कोई, लेकिन वो उसी में वो जो
0: मिठास,
1: हाँ मिठास है, जो एक लजीलापन है वो बड़ा खूबसूरत है
0: जी।
1: और इसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, लेकिन ठुमरी दादरा में एक और भी प्रथा रही है कि इन पंक्तियों को

0: उभारने के लिए, या इनका जो भावार्थ है उसे उभारने के लिए, या एक नयापन लाने के लिए. स्वर विस्तार तो होता ही है, बढ़त तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य के साथ भी खेल हो सकता है. तो इन्हीं पंक्तियों को आगे पीछे तो करते ही हैं, बोल बनाते तो हैं ही, लेकिन ये भी कुछ लोग करते हैं कि दोहे, शेर या अन्य किसी कविता की कुछ पंक्तियां लेके उन्हें इसमें साथ साथ गिरह लगा दी जाए
1: जी,
0: जो उन्हें जोड़ दिया जाए. इस सिर्फ इस बात को और उभारने के लिए कि क्या कहा जा रहा है. अब इसमें झरन लागी बदरिया गुइया, यदि इसी को उभारना है तो संभव है कि मैं किसी दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां ले लूं. और मुझे ब्रजभाषा के एक आधुनिक ही उनको कवि आप कह सकती हैं, उनका नाम है आत्मप्रकाश शुक्ला
1: जी.
0: उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि बरखा के बारे में है, और देखिए कि बरखा को नारी का प्रतीक बना के उन्होंने लिखा है इसको. सांझ ने आंज दयो कजरा,
1: आंज मतलब आंख में,
0: हाँ, हाँ, काजल डालने को,
1: सांझ ने काजल डाला,
0: हाँ,
1: सांझ ही जैसे काजल बनके आंखों में आई है.
0: बिल्कुल. सांझ ने आंज दयो कजरा, एक भौह पे काम कमान चढ़ाई, केसन बीच बंधे बदरा,
1: केसन के बीच बदरा
0: बादल बंधे हैं क्योंकि इतना इतने काले हैं केश,
1: बहुत अच्छे
0: और सघन है. केसन बीच बंधे बदरा, पुरवैया ने जूरा में गांठ लगाई. तो जो जूड़ा बना है उसमें पुरवैया ने गांठ लगाई है
1: जी.
0: मांग में दामिनी सी दमके, द्युति आनन देखी घटा घिर आई, नेह के नीर भरे गगरा, बहुत ही सुंदर है, नेह के नीर भरे गगरा, ढरकाई बे को बरखा ऋतु आई.
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर.
0: तो यदि मैं बढ़त कर रही हूँ झरन लागी बदरिया गुइया, तो मैं ऐसी पंक्तियां भी लाके और
1: एक नई मिठास
0: जी
1: घुल जाएगी इसमें.
0: तो वो प्रयत्न करेंगे अभी हम
1: जी, और हम सुनेंगे
0: जरूर.

0: संगीत सरिता कार्यक्रम को लेकर कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगीतकार हैं हारमोनियम पर

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। नरसी भगत फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे के सर में। जी एस नेपाली ने इस रचना को लिखा था और रवि ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त के स्वर में भरत व्यास की ये रचना। संगीतकार हैं वसंत देसाई, फिल्म का नाम तूफान और दिया।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम

0: तो बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

Sunday.

0: श्रीमती 420 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज़ थी, जा निसार अख्तर के बोल थे, ओ पी नैयर की तर्ज थी।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला,

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: हम जागे जग सोए रियाली, ये गीत आप सुन रहे थे रंगीन रातें फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। केदार शर्मा ने इस गीत को लिखा था और रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया। एक और
3: आ गया। कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए।

सती परीक्षा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें आशा भोसले और साथियों की थी। नासमीन इस गीत को लिखा था और सन्मुख बाबू का संगीत था।

0: कैदी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जान एसआर अख्तर ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: दास्तान सही परांजपे की, उजाले उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत गोमती के किनारे फिल्म के इस गीत से।

थे शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए अब सुनिए साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गीत, आवाजें हैं सुदास और अनुराधा की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार उषा खन्ना।

0: साजन बिना सुहागन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। यह सुदास और अनुराधा के आवाजों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था और उषा खन्ना ने तर्ज बनाई थी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
8: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के ए आर रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
7: सुनना न भूलिए।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: होना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स

0: सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें यशुदास और सुलक्षणा पंडित की थीं। गीत को लिखा था माया गोविंद ने।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आ रहे हैं विविध भारती पर। सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हो गया यारो अब क्या होगा, यारो अब क्या,
1: अब क्या होगा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की थी। सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था और उषा खन्ना ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ थी आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्याय

0: न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया।

0: और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें। भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति

और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं, फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीज़ों से भरें जो मायने रखती हैं।

0: दोस्तों, अगर हम नफरत की भावना से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी थोड़े से बदलाव लाने होंगे। क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफ़रत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और ख़ुद को दूसरों से कम या ज़्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं।
1: नफरत कर...

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे, तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का सम्मान करना सिखाएं।
1: नफरत

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुने।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आप सभी को चित्रलोक कार्यक्रम में सविता सिंह का। चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत आरक्षण फिल्म के इस गाने से।

चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आरक्षण फिल्म का गीत। आवाजें थीं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी। लीजिए अब सुनिए लुटेरा फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोनाली ठाकुर की आवाज़ थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक

0: ही डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं रावी और साथियों की आवाजें, गुलजार के बोल ए आर रहमान की तर्ज।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें।

0: सुई का ही प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: सब कुशल मंगल फिल्म का ये गीत आप

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हर्षित सक्सेना, स्वरूप खान और भूमि त्रिवेदी की आवाजें थीं। समीर के बोल थे, हर्षित सक्सेना का संगीत था। साथियों, आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 और रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनिएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सावन कुमार पर।

0: आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज़ें थीं मोहित चौहान, कौसर मुनीर, नीलेश मिश्रा और अनविता दत्त ने इस गीत को लिखा था। फिल्म का नाम था एक था टाइगर। आवाज़ें थीं वाजिद अली, श्रेया घोषाल, के पलक मुछाल, मोहित चौहान और तरन्नुम की। संगीतकार थे सोहेल सैन और साजिद वाजिद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: फिर से हम आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मोम सा है मेरा जानू।
0: पुष्पा 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

0: पुष्पा टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज थी। रकीब आलम ने इस गीत को लिखा था, देवी श्री प्रसाद का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज 9 अगस्त है। अगस्त का महीना दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागरण का महीना है। इसी महीने में स्वतंत्रता आंदोलन ने कई निर्णायक पड़ाव देखे। 9 अगस्त 1925 एनिवर्सरी ऑफ काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड की वर्षगांठ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो दिन जब कुछ निर्भीक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। लखनऊ के समीप काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन अपने कब्जे में कर लिया था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना, धन एकत्रित करना। इस अभियान में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक वीर क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। काकोरी की कहानी सिर्फ ट्रेन रोकने मात्र की कहानी नहीं अपितु उस अदम्य साहस और वीरता की कहानी है जिसमें युवाओं ने अपने निजी सुख, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज काकोरी कांड की वर्षगांठ पर हम उन सभी अमर क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी विरासत और उनकी देशभक्ति भारत की अमूल्य धरोहर है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं।

0: इस गीत के पहले आपने सुना था जो गीत, उसे हमने फाइटर फिल्म से लिया था। विशाल दादलानी, शेखर राव जियानी की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था उषा उत्तुप, कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: एबीसीडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अनुष्का मनचंदानी और साथियों की आवाज़ें थी। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए द्विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

0: रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें यार रहमान जावेद अली मोहित चौहान की थी, इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सदैव प्रसन्न और समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ इजाजत।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और नेत्रदान द्वारा अपनी आंखों की रोशनी वापस पा चुके श्री इंद्रपाल जी के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जबानी।
4: जैसे ऑपरेशन हुआ और फिर मेरी आंखों से मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा एकदम से चारों तरफ से दिखाई देने लगा। मेरे लिए तो वो भगवान है, उन्होंने अपना जीवन भी सफल कर लिया, हमारा भी किया, क्योंकि वो तो चले गए उसके बाद भी वो इस संसार में एक तरह की उनकी याद तो रहती है। हम उनको दुआ देंगे ही देंगे क्योंकि हमारा जीवन उनकी वजह से अच्छा चला जो हमारे लिए आंखें दान कर गया।
3: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार। आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर की ओर से सवेर वाली नमस्ते है जी। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी हमारी यही दुआ है, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी का सफर तय करें। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीख सिर्फ तारीख ही नहीं होती, बल्कि वो हमारे देश के आत्मसम्मान, शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। 9 अगस्त यानी आज का दिन और जहन में इतिहास की दो ऐसी घटनाएं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। पहले बात करते हैं 8 अगस्त 1942 की, जब ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, और 9 अगस्त यानी आज के दिन सन 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर अंग्रेजों की संपत्ति और खजाने को अपने कब्जे में कर दिखा दिया कि भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी चुपचाप नहीं सहेंगे। काकोरी घटना ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। आइए नमन कर दें उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके हर बलिदान को, जिसकी बदौलत आज हम आजाद हैं।

0: अच्छा बच्चियो, तुहानु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
1: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानू आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
0: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उन्हां नु 17 अगस्त नु मॉपअप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
1: अच्छा मैडम जी।
0: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
1: हां जी मैडम जी।
2: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा, होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

साग्निक राय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोहाली में 866 नौजवानों को सौंपे सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र। पंजाब को राहत, मंडियों से 18 लाख मीट्रिक टन पुराना स्टॉक 20 सितंबर तक उठाएगा केंद्र। काउंटर इंटेलिजेंस CIA फिरोजपुर और BSF के संयुक्त ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को 30 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन समेत गिरफ्तार कर सरहद पार नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश। पंजाब में 2026-27 सत्र से MBBS फीस 17.4% तक बढ़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारनौल से तिरंगा मैराथन को झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। नवभारत से जुड़ेगा हरियाणा का औद्योगिक NCR क्षेत्र, बावल से करनाल तक दौड़ेगी विकास की रफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सड़क निर्माण में देरी और मरम्मत कार्यों में ढिलाई पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट। अक्टूबर नवंबर में होगी हरियाणा स्टेट अकाउंट्स सर्विस परीक्षा। चंडीगढ़ में भवन नियमों का उल्लंघन अब जेब पर पड़ सकता है भारी। बिल्डिंग वायोलेशन पर अब रोजाना लग सकता है 3 से 10 रुपए प्रति वर्ग फुट जुर्माना। ये थी रीजनल और लोकल हेडलाइंस।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का ये कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गेरिमुइडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने पुदुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर मिलने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पुदुचेरी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और उनकी पत्नी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सरकार ने 4 उच्च न्यायालय में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।

0: विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी ऊपर वाले निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतरणी और सालंदी नदियों के जलस्तर बढ़ने से भद्रक जिले के कई लोगों की चिंता और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर फसल नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सांगनिक रॉय और सायंतम कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेरे वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की अश्मिता चलेहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वहीं फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी।
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है सावन के झूले पड़े। तो सावन के क्या हैं आपके कुछ यादगार पल, वो लम्हे या वो यादें जो सावन महीने के साथ आपकी जुड़ी हुई हैं, आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सावन के झूले पड़े। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो सर, नमस्कार। हम

0: हम सेवा के बाजी यहाँ सकता है सेक्टर 9 में ड्यूटी कर सर, लेकिन बात ऐसा है कि मैं गांव में हूँ तो मैं तो यहाँ ये जिला बहराइच उत्तर प्रदेश यूपी में
1: जी यहाँ जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में हैं आप।
0: हाँ प्रयागपुर बाजार है मेरा
1: जी। शिवा तिवारी जी, सावन का महीना है तो आपके वो यादगार पल, वो यादगार लम्हे आप हमारे साथ बांटना चाहें, क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ सर देखो, ये तो सावन का भी त्योहार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले छोटे पे बहुत ये अब देखो बचपन में सब कुछ अच्छा लगता सर, तो वो झूला तो पड़ता था, झूला पब तो झूलते थे और फिर सब सावन में सब सुबह हरा भरा सब तो अच्छा लगता था, और सावन में झूला का गीत जो होता है उसके भी बहुत अच्छा लगता था, सब लोग तो गीत में गाते थे, और वो जो ये जो गुड़िया होती है उसको हम लोग पेटने को जाते थे, बहुत अच्छा लगता था।
1: बिल्कुल, देखिए सावन का महीना केवल बचपन में ही अच्छा नहीं लगता बल्कि पूरी जिंदगी ताउम्र हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सावन का महीना जब आता है तो अपने साथ बहार लेकर आता है, चारों तरफ हरियाली है ना।
0: तो सर वो कोई भी त्योहार तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन तो ये तो बचपन में कोई भी अपने ऊपर बोझा नहीं रहता है, और बचपन में तो माँ बाप के बल पे और कुछ आपा टेंशन है, लेकिन अब ये जो आपका ये शादी हो जाए बीवी बच्चे तो उसमें थोड़ा घर गृहस्थी में थोड़ा वो हो जाता है।
1: बिल्कुल, घर देखिए घर गृहस्थी में ही तो अच्छा लगता है ना सावन का महीना।
0: हाँ,
1: है ना, तो घर पे जब मालपुए बनते हैं है ना, मिठाइयाँ बनती हैं, और घर के आंगन में जब झूला पड़ता है ना, अगर आपके घर पे आसपास कहीं पेड़ हैं वहां पर इकट्ठे होके सब झूला डालती हैं लेडीज सब, है ना।
0: हाँ लेडीज सब गीत गाती है सावन का, और फिर वो खाने में सब पकवान बनता है, मीठा बनता है, पूरी और भैया का सब, ये बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए शिवा तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
2: HPTDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: गुड मॉर्निंग सर, स्मृता डोगरा बोल रही।
1: जी स्मृता डोगरा जी, कैसी हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक सर। आपने जो इसमें कॉलर ट्यून गवर्नमेंट ने लगाई है ना, बड़ी अच्छी अवेयरनेस, लोग ध्यान से सुनते नहीं है, नंबर भी बता रहे हैं अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है।
1: जी
2: बड़े अच्छा आ रहा है इसमें कॉलर ट्यून सर। सावन का महीना तो वैसे हमारे शुरू से हम सोमवार के व्रत रखते थे ना, जो हमारे लिए मेन था कि मीठा खाना है सोमवार के व्रत में, नमक नहीं खाना है, उसमें साइंटिफिक भी होगा वो, है ना सर?
1: जी
2: जैसे, और दूसरी बात यह है कि जब सावन का भी नवारिशें लगती थी हमारे, तो शादी के बाद भी, शादी से पहले भी याद है, बचपन में किश्तियां चलाते थे जो पानी का रूट बन जाता था नया नया, उसमें खेलते थे कागज की किश्तियां बना के। छुट्टियों में जुलाई अगस्त तो थे ना हिमाचल में, तब तो
1: जी जी बिल्कुल
2: हिमाचल में पड़ी हूँ। हाँ जी हाँ जी। और शादी के बाद जब हम गाँव में रहते थे तो बारिश होनी तो बड़ा अच्छा लगना कि चूल्हे में खाना बनाना जो है वो, अब वहाँ जाके आराम से बैठेंगे और चने, काले चने भूनने, मक्की भूननी, मक्की का सीजन होता है वो खानी
1: जी,
2: और कपड़े सुखाने की दिक्कत होती थी पर एंजॉय करते थे कि आज थोड़ा काम घट गया कपड़े धोने का जो है वो सुखाओ एक अलग एंजॉयमेंट होता है स्टेज में सर।

0: लगता
1: तो
0: था कि
1: आप जब
0: बहुत
1: गांव में
0: अच्छा।
1: जाती
0: हाँ जी
1: थीं जा
0: हाँ
1: अभी
0: जी
1: भी जाती
0: हाँ
1: हैं
0: जी
1: गांव में
0: जाते हैं। हाँ
1: जब,
0: जी हाँ जी
1: तो वहां पे सब जो लेडीज हैं वो इकट्ठी होकर झूले डालती हैं वहां पे,
0: सर, आजकल सॉरी ये चीज नहीं है, पर हमने बहुत झूले हुए हैं
1: क्योंकि
0: साहब
1: पंजाब में तो
0: हमारे
1: आज भी ये रिवाज
0: हमारे
1: है
0: नहीं है हमारे।
1: जी।
0: एक्चुअल में सर लोग मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं, किसी से फ्री नहीं होते।
1: बिल्कुल, सावन महीने
0: अच्छा
1: का
0: मौसम
1: आनंद
0: है सर,
1: उठाना चाहिए, जो रीति रिवाज बने हुए हैं उनको निभाना चाहिए, है ना?
0: झूले
1: यही हमारी
0: झूले का
1: सभ्यता
0: तो
1: संस्कृति का एक अलग रंग है।
0: सर झूले में शायद जैसे हम ऊपर को जाते हैं ना तो वो डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। पहले तो एक बार जाने में लगता है, मैं पेड़ से ऊपर टच कर देती थी,
1: जी
0: तदौड़ हमीरपुर में था हमारा डैडी के जब थे फॉरेस्ट में रेंज ऑफिसर थे जब, तो मैं इतना ऊंचा चल जाती थी, मुझे ना फिर वो हार्ट बीट जो तेज होती है वो नॉर्मल होने शुरू हो गई, मतलब एक डर
1: जी
0: जैसा ना। ये भी एक इसमें साइंटिफिक होता
1: तो
0: है
1: स्मृता
0: जो।
1: जी सावन के झूलों को कितना मिस
0: हाँ
1: कर
0: जी
1: रही हैं आजकल।
0: बहुत मिस करती हूँ, मन करता है कि कभी ना कभी झूलूं। अभी भी जब बच्चों के पार्क में होता है, वो छोटे छोटे होते हैं, उनमें तो हम नहीं बैठ सकते ना, पर उनको देख के जो बड़े के लिए बड़ी पाइप पे लगाता है, कई बार 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ अपने ग्रैंड सन को गोदी में लेके। हाँ
1: जी चलिए स्मृता जी,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: एंड गॉड
1: बहुत बहुत
0: ब्लेस
1: शुक्रिया
0: यू,
1: आपका फोन करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, सावन के झूले पड़े, यही है हमारा आज का टॉपिक हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का। आप भी इसी टॉपिक पे अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं, अपने जो यादगार पल हैं, वो लम्हे हैं सावन महीने के, जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो चंडीगढ़, प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं गुप्ता कुमार से जिला बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है।
1: गौरव गुप्ता बोल रहा हूँ, गौरव गुप्ता कुमार की जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।
0: जी गौरव गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: आवाज आ रही
0: है? बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप?
1: आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल आ रही है जनाब।
1: मैं गौरव गुप्ता कुमार की जिला।
0: हाँ जी, आपने 3 बार अपना नाम ले लिया है, बोलिए आगे बोलिए।
1: अच्छा जी, अच्छा
0: जी,
1: ये जो महीना है जी सावन का महीना, ये तो भोलेनाथ का है जी। और पवित्र महीना माना जाता है
0: जी।
1: और हमारे वैसे और चोरे
0: आप थोड़ा सा, ये शोर आ रहा है बीच में, देखिए कितना, थोड़ा सा एक साइड में आ जाइए।
1: अच्छा जी,
0: जी
1: एक्चुअली यहाँ गाड़ियाँ चल रही
0: हैं,
1: तो ये जो है लेडीजें जो हरी चूड़ियाँ पहनती हैं
0: जी,
1: हरियाली आती है उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, तो आपने हरी चूड़ियाँ लेकर दी भाभी जी को?
1: हाँ जी, हाँ जी भाभी जी, हमारी दुकान में खुद ही बेचनी पड़ती है हमें तो।
0: अच्छा,
1: हम खुद ही दुकानदार हैं।
0: तो घर पे भी तो लेके गए होंगे भाभी जी के लिए कि नहीं लेके गए?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: दुकान का मतलब ये थोड़ी है ग्राहकों के लिए है सिर्फ,
1: वो ग्राहकों के लिए जी। तो खुद ही मालिक है स्टील के।
0: बिल्कुल,
1: वो खुद पहनते रहते हैं, बाकी चलता रहता है जी। बाकी ये जो इस महीने में लोग झूला झूला करते थे बचपन में, हम तो किश्तियां चला पानी में सब कुछ होता था।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो यादें जो हैं वो हम हर सावन के महीने में ताज़ा कर लेते हैं, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार जी, मैं रामवीर बोल रहा हूँ जी, गांव बीरमस्ती।
0: रामवीर जी, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप, क्या हुआ?
2: नहीं नहीं, धीरे बोल रहे जी।
0: अब ठीक है?
2: हाँ जी।
0: तो आज का जो हमारा विषय है, सावन के झूले पड़े।
2: हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही जी, सुन प्रोग्राम सुन रही
0: जी, बोलिए फटाफट।
2: तो ऐसा है सर, सावन की तो जो बात ही निराली होती है, क्योंकि गर्मी खत्म होने पर होती है और जो बरसात की ठंडी दोबारें अक्सर पड़ती रहती हैं और मौसम ही अलग बन जाता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और जहाँ भी देखते हैं हम पेड़ों पर ये चिड़ती हुई बेलें, ऐसे लगती हैं कि ये पेड़ों से बहुत प्यार कर रही हैं। और जैसे एक गीत भी है सर के, पेड़ों से मिलके गले

0: ਜੀ ਕਾ ਪਿਆਰ ਭਲੇ ਯੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੇਟੋਂ ਪਲੇ
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जब तपती हुई धूप गर्मी में जब सावन की फुहारें पड़ती है ना तो एकदम से आप देखो ना कैसे मौसम में बदलाव आता है और हमारे स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है।
0: हाँ जी हाँ जी। और फिर अपना सावन के लगते ही अपने त्योहार हैं जो वो शुरू हो जाते हैं जैसे तीज है रक्षाबंधन है तीज पर ही झूला पड़ता है जी।
1: जी बिल्कुल
0: त्योहार जो आते हैं अपने भारत में तो झूले अक्सर पड़ जाते हैं गांव में भी झूलते हैं जी।
1: चलिए रामवीर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है. नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर.
1: नमस्कार जी,
2: मैं किरण बात कर रही हूँ.
1: किरण जी कैसी हैं आप, थोड़ा जोर से बोलिए.
2: सर हम बढ़िया है, आप सुनिए.
1: रेडियो रेडियो से दूर जाइए पहले तो.
2: जी सर, आप ठीक
1: है? जी जी बोलिए.
2: सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सावन का महीना होता है वो बहुत ही प्यारा होता है.
1: जी
2: तो सर हम, मैं अपनी बात करना चाहूंगी. मैं पिछले साल पंजाब गई थी.
1: पिछले साल आप पंजाब गई थी?
2: जी सर.
1: जी
2: सर, इसी महीने गए थे हम, सावन के महीने में. तो मतलब वहाँ का रीति रिवाज जो है, मतलब अभी भी वहाँ पे झूला झूला जाता है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. पंजाब में जब तीज होती है तब झूले पड़ते हैं और बहुत धूमधाम से तीज का त्यौहार है जो वो मनाया जाता है सावन के महीने में.
2: और मुझे खुशी है कि मुझे वहाँ पे जाके अवसर मिला उनके साथ झूला झूलने का.
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है ना कि एकता में, वो कहते हैं कि एकता में अनेकता है ना, अनेकता में एकता, यही है हिंद की विशेषता. तो आप जब अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के जो तीज त्यौहार हैं उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा. ऐसे ही वहाँ के लोग जब आपके प्रदेश में आएंगे तो उनको तीज त्यौहार जानने का मौका मिलेगा. तो ये भारतीय सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है ना, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए. हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है. नमस्कार.
3: नमस्कार जी,
1: कौन बोल रहे हैं?
3: सुखदेव बोल रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से. जी
1: जी सुखदेव जी, कैसे हैं आप?
3: मेहरबानी, आप जैसे महानुभाव के अनुकंपा है सर.
1: तो सावन के झूले पड़े, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, फटाफट बोलिए.
3: मैं बचपन में, हम केल गाते केल गाते, डंडा गाड़ना है उसके ऊपर, डंडा रखना है फिर घूम रहा है उसके चारों तरफ. जी फिर कभी कभी गिर जाते थे, दो लड़के होते एक तरफ से दूसरे तरफ से.
1: अच्छा.
3: कभी हमारे दादाजी, हमारे आंगन में एक आम का पेड़ है बड़ा ऊंचा, उसके ऊपर झूले डालते थे सारे. हम पींग बोलते हैं, हमारे पींग.
1: बिल्कुल पींग ही बोलते हैं हम, पंजाब की तरफ भी और हिमाचल में भी पींग ही बोलते हैं उसको, हरियाणा में भी बोलते हैं पींग.
3: हाँ, उसमें अब झूला झूलते, दूर दूर से घूमते थे हम. जी
1: जी
3: बड़ा मजा आता था. कभी कभी गिर जाते थे, हमारे पास एक कटड़ा है.
1: तो आजकल सावन का महीना किस तरह से आप लोग मनाते हैं?
3: बस आजकल तो वैसे समझो हमने दुकान डाली है, दुकान में गाने सुनते रहते हैं.
1: अच्छा, गाने सुन के मनाते हैं सावन.
3: आप 75 साल हो गए मेरे को रेडियो सुनते हुए. जी
1: 75 साल. आपकी उम्र कितनी है?
3: मेरी बस 70 की हो रही है जी.
1: 70 की उम्र है और 75 साल हो गए आपको रेडियो सुनते हुए.
3: ना उसमें कम नहीं होगा ना, 1975 से जी.
1: अच्छा, 1975 से सुन रहे हैं.
3: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी जी,
3: ऐसी बात है.
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
3: बहुत अच्छे लगते हैं बोलते जी. नमस्कार जी.
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए.
3: सावन को आने दो, उसको गाओ.

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और नेत्रदान द्वारा अपनी आंखों की रोशनी वापस पा चुके श्री इंद्रपाल जी के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जबानी।
3: जैसे ऑपरेशन हुआ और फिर मेरी आंखों से मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा एकदम से चारों तरफ से दिखाई देने लगा। मेरे लिए तो वो भगवान है, उन्होंने अपना जीवन भी सफल कर लिया, हमारा भी किया, क्योंकि वो तो चले गए उसके बाद भी वो इस संसार में एक तरह की उनकी याद तो रहती है। हम उनको दुआ देंगे ही देंगे क्योंकि हमारा जीवन उनकी वजह से अच्छा चला जो हमारे लिए आंखें दान कर गया।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है सावन के झूले पड़े। आप भी इस कार्यक्रम में अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ जी, प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं और टॉपिक भी अच्छा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन में जो है सावन महीने की यादें जो हैं बहुत अच्छा लगता था, पर जैसे कि बारिश में भीगना और जैसे कि चाय पकौड़े ये तो हम खाते थे बचपन में और बारिश में भीगते थे, और कई बार जो है हमारे डांट भी पड़ती थी बचपन में कि बारिश में मत भीगो कि बीमार हो जाएंगे, लेकिन बच्चे जो है हम मानते नहीं थे, फिर बारिश में भीगने जाते थे।
0: बिल्कुल, बच्चे कहाँ मानते हैं।
1: जी जी, बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर भीगते थे क्या बोलते बारिश के मौसम में। तो और भीगते तो इतने तो दूर है, लेकिन कई बार है पानी की छींटे जो है एक दूसरे को मारने हैं तो ये भी करते थे। तो फिर जब बच्चे रोते तो फिर एक दूसरे की शिकायत करते कि इसने मुझे पानी फेंका या उसने ये फेंका है, तो फिर उससे फिर डांट पड़ती रहती थी बचपन में हमें।
0: बिल्कुल। और सावन के महीने में आपके घर पे भी कुछ मीठा बनता था, क्या क्या बनता था थोड़ा बताइए।
1: जी जी, हमारे सावन के महीने में जो है गुड़ के चावल बनते थे और क्या बोलते मीठी खीर बनती थी, और कई बार जो है समय जो सेमिया होती है ये बनती थी, और

0: सबसे बड़ी बात है पॉपकॉर्न जो है हम सावन के महीने में जरूर खाते थे।
1: पॉपकॉर्न
0: जो है मक्खी के बनता है जो पॉपकॉर्न,
1: जी जी
0: हाँ, उसको भी खाते थे। लेकिन जो कई बार जो है अखरोट की चटनी या ये जो इस कभी इस क्या बोलते खाते थे हम सेठू के साथ, बढ़िया उसको खाते थे।
1: देखिए जब सावन का महीना आता है तो एकदम से जैसे कुदरत आपके लिए वो कहते हैं ना कि तोहफों की भरमार जो है भेजती है।
0: जी जी जी जी जी जी जी
1: है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आजकल कैसे सावन के महीने का आनंद उठा रहे हैं आप?
0: आजकल जो है सावन के महीने का बहुत आनंद उठा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं सावन के महीने में जो बचपन में खेलते हैं, और इस समय जो बारिश नहीं है, बीच बीच जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे में जो है संगीत और संगीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: जी जी जी
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
0: जी धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और नेत्रदान द्वारा अपनी आंखों की रोशनी वापस पा चुके श्री इंद्रपाल जी के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जबानी।
1: जैसे ऑपरेशन हुआ और फिर मेरी आंखों से मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा एकदम से चारों तरफ से दिखाई देने लगा। मेरे लिए तो वो भगवान है, उन्होंने अपना जीवन भी सफल कर लिया, हमारा भी किया, क्योंकि वो तो चले गए उसके बाद भी वो इस संसार में एक तरह की उनकी याद तो रहती है। हम उनको दुआ देंगे ही देंगे क्योंकि हमारा जीवन उनकी वजह से अच्छा चला जो हमारे लिए आंखें दान कर गया।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ भैया नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
3: जी भैया हम
2: जी बोलिए।
3: हाँ भैया योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
2: जी योगेश जी कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
2: तो छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा है?
3: अभी तो ठीक है, बढ़िया है, सुहाना है।
2: तो आज का जो हमारा विषय है हेलो चंडीगढ़ का वो आपको पता ही है, सावन के झूले पड़े, क्या कहना चाहेंगे?
3: अब ये तो हमारे यहाँ भी काफी प्रसिद्ध है भैया, और खास तौर पे जो पारंपरिक झूले होते हैं तो पेड़ों में भी लोग बांध के झूलते हैं, और हमारे समय बचपने में तो घर में भी जो छोटी मोटी जगह होती थी तो उसमें भी झूले बनाते थे, और जो खास तौर पे जिस समय उपवास वगैरह रहते हैं ना
2: जी,
3: जैसे अभी सावन सोमवार उपवास भी रहते हैं बहुत सारे लोग,
2: बिल्कुल,
3: तो बिल्कुल मतलब आज भी वो परंपरा मतलब चले आ रहा है।
2: यही तो खासियत है हमारे भारत की
3: जी,
2: समृद्ध परंपरा है हमारी, है ना? तो उनको ऐसे ही हम लोग आगे लेके जाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं ये जो जी, हमारी जी, परंपराएं हैं या जो हमारे रीति रिवाज हैं
3: जी,
2: तो तभी जो हमारी विरासत, इतनी अमीर विरासत है हम भारतवासियों की
3: जी जी।
2: योगेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
3: धन्यवाद।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मीनाक्षी कालिया। हमारा नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 12वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और नेत्रदान द्वारा अपनी आंखों की रोशनी वापस पा चुके श्री इंद्रपाल जी के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जबानी।
2: जिंदगीनामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
0: जिंदगीनामा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि नेत्रदान महादान। नेत्रदान करके हम एक नहीं बल्कि 8 व्यक्तियों के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकते हैं। आज जिंदगीनामा प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत को आपके रूप

0: रूबरू करवा रहे हैं। उन्होंने दृष्टिहीन होते हुए जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, परंतु जैसे ही किसी की दान की हुई आंखें उन्हें लगी, उनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया, उनकी आंखों ने इस संसार को देखना शुरू किया। उसके बाद अपनी मेहनत और बुलंद हौसले से ये आगे बढ़ते गए और ये बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान श्री इंद्रपाल जी की। इंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: इंद्रपाल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और परवरिश किस तरह की रही आपकी?
1: सर, मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र शाहबाद मारकंडा के पास गांव कलसाना है, वहाँ हुआ। और गांव में रहे और बच्चों को जैसे स्कूल में डालते हैं, डाल दिया उन्होंने माँ बाप ने, और बाकी मेरा ट्रीटमेंट के लिए बस घूमते रहे मेरे माँ बाप लेके।
0: जी इंद्रपाल जी, ऐसा क्या हुआ था कि बचपन में आपकी ये जो आंखों की रोशनी है वो चली गई? क्या शुरू से ही आपकी आंखों की ये प्रॉब्लम थी, किसी रोग के कारण आपको ऐसा हुआ? क्या हुआ, क्या था बचपन में?
1: मेरे को पैदा होते ही आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे ये और कम होती गई। एक वक्त ऐसा आ गया कि स्कूल के टीचर ने बोला कि अपने पेरेंट्स को बोलो अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाओ कहीं से, और अब आप ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाते।
0: आपको ऐसे वाकई लगता था कि आप ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे थे?
1: हाँ बिल्कुल, मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा था और आगे भी बैठने के बावजूद भी मेरे को नहीं दिखाई देता था। टीचर ने तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि इसको अब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसकी आंखों में दिक्कत हो चुकी है ज्यादा, और आप इसका कहीं ट्रीटमेंट करवाइए। फिर उन्होंने स्कूल से फिर हटा दिया।
0: इंद्रपाल जी, आप हमें ये बताएं कि कौन सी क्लास थी जब आपके टीचर साहबान ने आपके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा है? क्या उम्र थी आपकी?
1: जब मैं 10th क्लास में था जब मैं ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाया। 9th मैंने क्लियर किया था और 10th हमारी शुरू हुई थी।
0: जी,
1: और मेरी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होगी, 14-15 साल के आसपास।
0: जी, तब आपके पेरेंट्स को बुलाया गया और कहा गया कि आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा है तो इसका इलाज करवाएं आंखों का। तो आपके माता पिता ने गांव में आपका इलाज करवाया, क्या हुआ था, कहाँ पे गए वो लोग आपको लेके?
1: मेरे माता पिता जी को तो बचपन से ही पता था कि आंखों में काफी नजर कम है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं बिल्कुल छोटा था, 1-2 महीने का था, जब से ही मेरे माँ बाप मेरे को लेके कई जगह घूमते रहे, दिखाते रहे, लेकिन कहीं से कोई किसी डॉक्टर को कोई समझ नहीं आया। जहाँ भी कोई लोग बताते थे कि वहाँ दिखाओ वहाँ चले जाते, कोई कहता वहाँ दिखाओ वहाँ चले जाते थे। 4th या 5th क्लास में था, उन दिनों की बात है, वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लेके गए थे वो, लेकिन वहाँ उन डॉक्टर्स को भी कोई ज्यादा कोई समझ नहीं आया भी क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है, कहीं से कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद जब स्कूल से मेरे को बोला गया कि आप इसका ट्रीटमेंट करवाओ, 10th क्लास में था जब मैं,
0: जी,
1: तो फिर हमारे किसी रिश्तेदार ने ही बताया था कि आप PGI ले जाओ बच्चे को, PGI में दिखाओ। उनका किसी का ट्रीटमेंट वहाँ PGI में हुआ था तो उन्होंने बोला था कि आप डॉक्टर साहब को PGI में दिखाओ।
0: तो फिर आपके पेरेंट्स चंडीगढ़ में आपको लेके आए?
1: बिल्कुल, मेरे पिताजी मेरे को यहाँ लेके आए और फिर यहाँ डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर साहब को इन्होंने बोल दिया था कि आपका कॉर्निया खराब है और यहाँ कॉर्निया का ऑपरेशन होगा।
0: जी,
1: तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा यहाँ पर।
0: जी इंद्रपाल जी, एक बात बताएं कि आपको एक आंख से ठीक ढंग से नहीं दिख पा रहा था या पूरी तरह से नहीं दिख रहा था, या दोनों आंखों से आपको पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया था?
1: सर, मेरे को दोनों आंखों से कम दिखाई देता था और धीरे धीरे कम होती जा रही थी बिल्कुल नजर, तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। इतनी कम नजर हो गई थी कि मेरे को सीढ़ियों का भी नहीं कुछ पता चलता था, कोई रास्ते में पत्थर पड़ा है उसका भी नहीं कुछ पता चलता था, टकरा जाता था मैं, कोई गड्ढे का नहीं पता चलता था, तो इस तरह से आदमी का भी कई बार नहीं पता चलता था और टक्कर हो जाती थी।
0: जी, तो
1: चलने फिरने में काफी दिक्कत होती थी।
0: जी, तो इस दौरान और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आपकी बिल्कुल नजर चली गई तो?
1: सर, मेरे को एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मेरे को पढ़ने की इतनी दिक्कत हो चुकी थी कि मेरे को बहुत ज्यादा चिंता कि मेरी लाइफ का क्या होगा, अब मैं अब कैसे करूंगा आगे। लेकिन थोड़ी दिल में था कि मैं कुछ आगे करूं तो, लेकिन बस आंखों की वजह से मेरे लिए काफी परेशानी हो चुकी थी।
0: जी,
1: गांव का माहौल भी ऐसा था कि वहां पे भी कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं नजर आता था कि किधर जाएं क्या करें, कुछ बताने वाला गाइड करने वाला नहीं था कोई भी।
0: जी, गांव में रहते हुए आपको ऐसे लग रहा था और एक तरफ से आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो चारों तरफ अंधेरा आपको नजर आ रहा था, ऐसे में रोशनी की किरण कौन लेके आया आपकी जिंदगी में, क्या हुआ था?
1: जब मेरे पेरेंट्स पीजीआई लेके आए तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने यहाँ पे काफी जांच पड़ताल के बाद ही फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कॉर्निया का ऑपरेशन होगा।

0: तो फिर उन्होंने मेरा कॉर्निया के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया
1: जी। तो आसानी से कॉर्निया मिल गया था यहाँ पे?
0: नहीं सर, आसानी से कोई कॉर्निया यहाँ नहीं मिल पा रहा था, बड़ी परेशानी हुई। डॉक्टर साहब ने वेटिंग में हमारा नंबर लगाया, अभी उससे पहले तो ऐसे नहीं हो पा रहा था कि एकदम से जाएं और ऑपरेशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। काफी टाइम लग रहा था, इसमें हमें वेट करना पड़ रहा था
1: जी। लेकिन मन में तो एक उत्सुकता होगी कि जल्दी जल्दी मुझे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाए और मैं भी इस संसार को दोबारा देख पाऊं।
0: यही उम्मीद लेके हम हॉस्पिटल आए थे और दिल यही कहता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मेरे लिए अच्छा ही होगा जो होगा।
1: तो ये जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट था आपका, कब हुआ?
0: मेरा ट्रांसप्लांट 2010 में हुआ, पीजीआई में। डॉक्टर अशोक शर्मा थे वहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर
1: जी,
0: उन्होंने किया मेरा ऑपरेशन। तो अच्छा रहा, कामयाब ऑपरेशन रहा और मेरे को उससे काफी फायदा हो गया।
1: जब आपने पहली बार आंखें खोली दोबारा ऑपरेशन के, तो क्या महसूस हुआ आपको, क्या सोचते थे आप?
0: मेरे को जैसे ऑपरेशन हुआ और फिर मेरी आंखों से मैंने देखना शुरू किया तो अच्छा, एकदम से चारों तरफ से पहले से काफी बेटर दिखाई देने लगा। और मेरे को जो पहले मैं किसी के हेल्प से चलता था या स्टिक से चलता था, तो अपने आप चलना शुरू कर दिया
1: जी। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपने देखना शुरू किया इस संसार को?
0: मेरे पेरेंट्स को काफी खुशी हुई और जो और भी लोग जानने पहचाने वाले थे, हमारे रिश्तेदार थे, सबको अच्छा लगा कि हाँ अब ये अपने आप चलने लगा
1: जी। क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन जब इस तरह की कोई समस्या आती है जैसे आपको आई, तो माँ बाप चाहते हैं कि कहीं से कोई इलाज मिल जाए, मेरा बच्चा देखना शुरू कर दे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा पढ़े, हमारा नाम रोशन करे, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो अगर हम आपकी माता जी की बात करें, क्योंकि माँ बहुत ही इमोशनल होती हैं, माँ के बारे में यही कहा जाता है कि माँ की ममता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके माता जी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको पहली बार इस संसार को दोबारा देखते हुए देखा?
0: मेरी मदर भी बहुत खुश हुई और बहुत अच्छा लगा उनको, उनका बच्चा चलने फिरने लग गया। लास्ट तक जब मेरा ट्रीटमेंट चला तो मेरी मदर ने ही मेरी सेवा की और मेरा ध्यान रखा बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा तो माँ ही होती है जो ध्यान रखती है इतना, बाकी लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन माँ की अटैचमेंट ज्यादा ही होती है अपने बच्चों के साथ।
1: माँ की आंखें रोई नहीं आपको इस संसार को देखते हुए? खुशी के आंसू नहीं आए उनमें?
0: बिल्कुल, उनको अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन पिछले दिन भी याद करके थोड़ा सा उनको दुख भी होता है, इतनी बच्चे ने परेशानी झेली।
1: उन्होंने आपको हर जगह दिखाने की कोशिश की, एम्स भी लेके गए आपको, वहां पे भी आपको दिखाया, गाँव में भी दिखाया, जो कोई बोलता था वहीं पे आपके माता पिता आपको लेके जाते थे कि कहीं से कोई इलाज तो मिले, हमारा बच्चा भी इस संसार को देखे। इंद्रपाल जी, आपसे आपके जीवन संघर्ष की ये कहानी हम यूं ही सुनते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आपकी पसंद का और अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: आंधी पिक्चर का तुम आ गए हो नूर आ गया।
1: जी बिल्कुल, जैसे वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी जिंदगी में नूर बन के आए, जैसे जिन्होंने अपनी आंखें दान की थी और उनकी आंखें दान की हुई जब आपको लगी तो आपकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई।
0: बिल्कुल सर,
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का आंधी फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और फिर नेत्रदान द्वारा आंखों की रोशनी वापस पाने वाले इंद्रपाल जी की जिंदगी से जुड़ी हुई इनके जीवन संघर्ष की कहानी हम सुन रहे हैं इन्हीं की जबानी। इंद्रपाल जी, जब आपको आंखें लगी तो पढ़ाई का क्या हुआ, पढ़ाई किस तरह से आपने अपनी पूरी की? आपने जैसे बताया कि 10th क्लास में आप जा रहे थे जब ये प्रॉब्लम आपकी शुरू हो गई थी।
1: सर, उसके बाद सेक्टर 26 चंडीगढ़ में ब्लाइंड स्कूल है
0: जी,
1: तो वहाँ इन्होंने मेरे को एडमिशन के लिए भेजा। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि सर मैं क्या करूँ, मेरे को अभी मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को ठीक कर दो आप जल्दी। कहते कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा, करेंगे। तो मेरे को सेक्टर 26 वहाँ भेजा गया, वहाँ मैंने बरेलवी सीखी
0: जी,
1: तो स्टडी करता रहा वहाँ से। ऑपरेशन तो फिर बाद में हुआ, फिर एकदम से तो कोई आंखें अवेलेबल थी नहीं, मिलती नहीं है
0: जी। आज भी बहुत बड़ी समस्या है एक कि कॉर्निया उतने है नहीं जितनी जरूरत होती है हमारे देश में, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि हम सबको आगे आना चाहिए और नेत्रदान के लिए प्लेज करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान के लिए आगे आएं और इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनको कॉर्निया की जरूरत है उनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाए और वो भी इस संसार को देख सकें, अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। तो इंद्रपाल जी, 26 ब्लाइंड स्कूल की आपने बात की, तो कहां तक आपने पढ़ाई की वहां पे?
1: 9th तो मैंने क्लियर कर ही रखा था, तो उसके बाद 10th किया, ब्रेल सीखा और मेरे को केनिंग वगैरह उन्होंने सिखाई, जो कुर्सियां बुनते हैं वो किया। उसके बाद और भी कई काम उन्होंने सिखाए जिस ताकि मैं अपना कुछ कर सकूं
0: जी। तो क्या क्या काम करते थे आप वहाँ, क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे? एक तो आपने बताया कि कुर्सियां बुनने का काम आपने सीखा,
1: मोमबत्ती बनाने का काम सीखा
0: जी,
1: उसका काम सीखा मैंने, कैंडल मेकिंग बोलते हैं उसको
0: जी,
1: यही सीखा मैंने वहाँ पर, क्योंकि थोड़ी मैथ की दिक्कत आती है ब्लाइंड आदमी को, तो वो उन्होंने मैथ भी हमें थोड़ी वहाँ से स्पेशल एक हमारी स्लेट होती है उसपे उन्होंने मैथ भी सिखाया
0: जी। किस तरह की दिक्कत आती है थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता चले कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो होता है उसको पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है।
1: उस समय काफी दिक्कत थी क्योंकि जो ब्रेल है वो उसको हम टच करके पढ़ते हैं, आंखों से तो पढ़ नहीं सकते, तो उसके डॉट्स होते हैं उसके ऊपर, उसको हाथ लगाते हैं ऐसे टच करते जाते हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं ऐसे, वो सिखाया जाता है। तो मेरे लिए तो थोड़ी दिक्कत ही थी क्योंकि मैं पहले साइटेड स्कूल में पढ़ा

0: हाँ, उसके बाद फिर ब्लाइंड स्कूल में मैं आया, तो वहाँ मेरे को दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ा, बिल्कुल नए तरीके से मेरे को सीखना पड़ा सारा, नए शुरुआत करनी पड़ी वहाँ से छोटे बच्चों के साथ बैठ के
1: जी।
0: तो फिर मैंने जल्दी सीख लिया अपनी, थोड़ी कोशिश की मैंने, थोड़ी मेहनत की तो जल्दी सीख गया मैं
1: जी।
0: टेंथ मैंने ब्लाइंड स्कूल की सहायता से वहाँ की, उसके बाद फिर डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया प्लस वन में। तो वहाँ भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था स्टडी का, प्लस वन का जो था मेरा। तो फिर मैंने लुधियाना में टेलीफोन ऑपरेटर का डिप्लोमा किया जो स्पेशल विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए होता था
1: जी।
0: तो वहाँ से करके उसके बाद फिर मेरे को बैंक में जॉब मिली
1: जी। और बाकी की पढ़ाई आपने कब?
0: बाकी की पढ़ाई फिर मैंने बैंक ज्वाइन करने के बाद की, मैंने ग्रेजुएशन किया।
1: क्योंकि आप में जज्बा था कि मैं आगे पढ़ूं और भी आगे जाके जिंदगी में कुछ कर सकूं, तो नौकरी के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली
0: जी सर।
1: तो उसके बाद आपकी जिंदगी में किस तरह की खुशियां आई, थोड़ा वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। आपकी शादी कब हुई?
0: शादी मेरी लगभग 18 साल हो गया शादी हुई को
1: जी।
0: जॉब लगने के बाद ही मेरी शादी हुई। अच्छा लग रहा था कि आगे की जिंदगी अब अच्छी हो जाएगी, एक जीवन साथी मिल गया तो और भी अच्छा रहेगा।
1: जब आपकी शादी हुई तब आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुका था या बाद में हुआ?
0: मेरा सर दो बार ट्रांसप्लांट हुआ, एक पहले हुआ था एक ये बाद में हुआ, तो मैं दो बार ऐसे ट्रांसप्लांट हुआ।
1: आपको क्या महसूस होता है उस व्यक्ति के बारे में जिसने ये आंखें दान की जो आपको अभी लगी हुई हैं?
0: मेरे लिए तो वो एक तरह के भगवान है, उन्होंने अपना जीवन भी सफल कर लिया, हमारा भी किया, क्योंकि वो तो चले गए उसके बाद भी वो इस संसार में एक तरह के उनकी वो याद तो रहती है, कोई याद करे ना करे, लेकिन हम उनको दुआ देंगे ही देंगे क्योंकि हमारा जीवन उनकी वजह से अच्छा चला जो हमारे लिए आंखें दान कर गया
1: जी। बिल्कुल।
0: और परमात्मा ऐसे लोगों को अच्छी जगह पे रखे।
1: इंद्रपाल जी, आपने बताया कि आपकी बैंक में जॉब लग गई, तो आप अच्छे तरीके से बैंक में काम कर पा रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
0: नहीं सर, मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ
1: जी।
0: और बैंक में भी अच्छा सहयोग मिलता है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है
1: जी।
0: मैं सब लोगों से मिलता हूँ और बैंक का अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
1: पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है बैंक में, तो ऐसे में कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं आपकी, जो वो काम लेके आया है अपना आपके पास, आप उस काम को आसानी से कर देते हैं?
0: बिल्कुल सर, उनको पूरा सेटिस्फाइड करते हैं, बल्कि लोग कितनी तारीफ भी करते हैं भी आप इतना अच्छा हमें समझाते हैं। कई बार वो कहते हैं हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें कोई इतना नहीं ऐसे समझा पाता जितना आप लोग हमें गाइड करते हो। सर मैंने जिंदगी में काफी चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन मैंने जिंदगी को और आसान करने के लिए खेल में भी काफी पार्टिसिपेट किया। मैं ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलता रहा और लखनऊ भी खेलने गया, टूर्नामेंट खेले, चंडीगढ़ सेक्टर 16 में स्टेडियम है वहाँ भी हमारा टूर्नामेंट हुआ, वहाँ भी हम खेले। इसके अलावा चेस भी खेला करते थे कभी कभी हम इकट्ठे, जब हमारे पास टाइम होता था तो हम चेस भी खेला करते थे, तो ब्लाइंड के लिए स्पेशल चेस भी होती है, उससे भी हमें काफी अच्छा लगता था, वो भी हम खेलते थे। और योगा भी किया करते थे, योगा में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसमें कॉम्पिटिशन हुआ था तो उसमें भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला था, काफी अच्छा लगता था। योगा में मेरे को काफी अच्छा शौक था और जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और आंखों के लिए भी अच्छा रहता है योगा, तो ये भी हम करते थे। ब्लाइंड स्कूल की तरफ से योगा के लिए हम कंपटीशन में गए थे, तो वहाँ हमें गोल्ड मेडल, पिंजौर गार्डन में भी गए थे, वहाँ पे हमने कंपटीशन हमारा हुआ था तो वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला। 23 सेक्टर योगा सेंटर में भी जाते थे तो वहाँ भी हमारा कंपटीशन होता था, तो वहाँ भी हम पार्टिसिपेट करते थे
1: जी। इंद्रपाल जी, आपके अपने बच्चों के बारे में बताइए, कितने बच्चे हैं आपके और वो किस तरह से आपको खुशियां दे रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप?
0: सर मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मेरा प्लस वन में है
1: जी
0: और दूसरा बेटा मेरा 9th में है
1: जी। तो क्या सपने देखते हैं उनके लिए?
0: हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से और आगे बढ़े, तो हर पेरेंट्स यही सोचता है कि हमारे बच्चे हमारे से आगे ही जाएं, तो हम भी यही सोचते हैं कि बच्चे जिंदगी में कामयाब हों, अच्छे आगे जाएं, तो अभी तो पढ़ रहे हैं।
1: और हम ये उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि वो खूब पढ़े लिखे, आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। इंद्रपाल जी, यहाँ पर हम एक और गीत आपकी पसंद का अपने सुनने वालों को और आपको सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: आक्रमण फिल्म का एक गीत है, ये मौसम आया है।
1: कितने सालों में? बिल्कुल सही गाना आपने चुना है, क्योंकि बहुत देर के बाद खुशियों का मौसम आपकी जिंदगी में आया, जिस तरह से आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: रोशनी खो चुके और फिर नेत्रदान द्वारा आंखों की रोशनी वापस पाने वाले इंद्रपाल जी की जिंदगी से जुड़ी हुई इनके जीवन संघर्ष की कहानी हम सुन रहे हैं इन्हीं की जबानी। इंद्रपाल जी, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ, आपने देखना शुरू किया, अगर हम नेत्रदान की बात करें, आप बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो नेत्रदान की प्लेज करने के लिए आप लोगों को किस तरह से प्रेरित करते हैं?
1: जो लोग बैंक में आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि नेत्रदान प्लेज करें।
0: जी, नेत्रदान की प्लेज करें आप उनको बोलते हैं, तो आपके जो परिवार के मेंबर हैं उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी नेत्रदान की प्लेज करें, नेत्रदान करें?
1: जहां भी मेरे को मौका मिलता है मैं सब जगह यही बोलता हूं कि आप नेत्रदान के प्लेज करें, और इससे किसी ना किसी का तो भला होगा ही होगा। और आप जो आदमी इस दुनिया से चला गया वो तो जाना ही है, सबने जाना है, लेकिन किसी के और जो है, जो परेशान हो रहा है या बेचारा किसी को दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत है, वो तो कितनी दुआएं देगा अगर उसको अगर दिखना शुरू हो जाएगा, अगर उसको कॉर्निया ग्राफ्टिंग हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा।
0: जी, आपकी वाइफ ने नेत्रदान की प्लेज की हुई है?
1: सर, उन्होंने अपनी इच्छा से ही किया, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: जी, उन्होंने आपकी तरफ देखा होगा कि आप पहले देख नहीं पाते थे, फिर आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ तो आप देखने लगे, आपको कितनी खुशी हुई और आपकी फैमिली खुशनुमा जिंदगी बिता रही है, शायद इसी कारण उन्होंने प्रेरित होके अपनी आंखें दान करने की प्लेज की होगी।
1: बिल्कुल सर।
0: इंद्रपाल जी, आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो नेत्रदान के बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: सर, मैं सब लोगों से, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, सबसे मैं अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति को, जिसकी भी आंखें ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उसको नेत्रदान करना चाहिए, ताकि वो दूसरे की जिंदगी में भी रोशनी ला सके। शरीर हमारा मरने के बाद राख ही हो जाएगा, उसका क्या फायदा, आंखें भी खत्म हो जाएं, क्या फायदा उसका। लेकिन अगर ये किसी के काम आ जाए शरीर का, मैं सोचता हूँ खाली आंखें नहीं, और भी अंग है, और भी काम आ सकते हैं, लेकिन आंखें तो बहुत ही मायने रखती है कि इस आंखों की वजह से ही कोई दूसरा इस संसार को देख सकता है, अपने बच्चों को देख सकता है, अपने माँ बाप को देख सकेगा, दूसरे आम लोगों को, सबको, इधर संसार की हर एक चीज वस्तु को देख सकेगा, कितना अच्छा लगेगा, वो कितनी दुआएं देगा, जिसने भी नेत्रदान किया होगा उसको कितनी दुआएं देगा, उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी अगर वो इस संसार में नहीं है तो।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, नेत्रदान इसीलिए कहते हैं कि महादान, क्योंकि नेत्रदान करना बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है, और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी नेत्रदान के लिए आगे आएं। इंद्रपाल जी, आप जिंदगी नामा प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में, और जब आपको आंखें लगाई गई और उसके बाद जो आपकी जिंदगी में हुआ उससे जुड़ी तमाम बातें आपने हमारे साथ शेयर की, जिंदगी नामा प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर।
0: दोस्तों, आज यादों का कारवां में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में। बचपन में अपनी आंखों की रोशनी खो चुके और नेत्रदान द्वारा अपनी आंखों की रोशनी वापस पा चुके श्री इंद्रपाल जी के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।
2: अभी आपने प्रोग्राम सुना यादों का कारवां। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
4: ए, क्या मैं बोलूं?
5: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 12 बजे तक

0: आपके साथ रहेंगे। और जो श्रोता इस प्रोग्राम में अक्सर हमें फ़ोन करते हैं, उन्हें मालूम ही है कि हम उन्हें अपने यहाँ से 5 फिल्में देते हैं और यानी 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं, और इन 5 फिल्मों में से आपने किसी एक फिल्म को चुन लेना है, और उस फिल्म को चुनने के बाद उसमें से अपनी पसंद का एक गाना चुन लेना है, फिर बातों ही बातों में वो हमें बता देना है और हम वो गाना आपके लिए प्ले करेंगे। और हाँ, जो गाना हम प्ले कर चुके हैं उस गाने की आप फिर से फरमाइश ना करें। हाँ, उसी फिल्म का कोई और गाना आप सुनना चाहें तो वो हम शामिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में बातें करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। ये हमारे 3 नंबर्स हैं और इनमें से किसी एक को मिलाना है और बातें कर लेना है। तो फिलहाल तो अभी कोई भी हमारा श्रोता जो है वो ऑनलाइन नहीं पहुंचा है, तो अब हम बता देते हैं फिल्मों के नाम। लाइन पर आ चुके हैं, फिल्मों के नाम नोट कीजिए, तेजाब, याराना, जूली, कोयला और मौसम। ये मौसम है संजीव कुमार साहब की जो फिल्म है वो ये फिल्म है, मौसम नई वाले नहीं है। तो तेजाब है, याराना है, जूली है, कोयला है और मौसम है, ये हैं फिल्में। तो पहले श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नाम बताइए।
1: भाई को यश कुमार वर्मा जी, नमस्कार।
0: यश कुमार वर्मा जी, क्या हाल है आज? तो आप ठीक लग रहे हैं बोलते हुए, अच्छी आवाज लग रही है आज तो आपकी।
1: कुछ सुधार।
0: बिल्कुल सुधार होगा, कुछ आपकी कोशिशें होंगी, कुछ हमारी दुआएं होंगी, कुछ सुनने वालों की भी होंगी, क्योंकि सुनने वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो साहब बताइए फिर कौन सी फरमाइश पूरी करें आपकी?
1: कोयला।
0: क्या बात है, कोयला के गाने तो बड़े पॉपुलर गाने अपने जमाने के जी, बहुत प्यारा गाना है। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये गाना है आपके रेडियो सेट पर। यश कुमार वर्मा जी, एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, पहली फरमाइश हमने पूरी की कोयला फिल्म से। गाना बड़ा प्यारा है, लेकिन हमें आपसे भी तो बातें करनी हैं, और बातों के साथ साथ और भी फिल्में शामिल करनी हैं, गाने भी शामिल करने हैं। तो चलिए अब अगले श्रोता की तरफ चलते हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी,
1: रेडियो बंद कर लें जी। हेलो।
0: हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
1: सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी की ओर से अनिल भाईजान को प्रेम भरी नमस्ते है जी।
0: वाह जी, वाह वाह, नमस्कार जी, आपको भी हमारी तरफ से सादर नमस्ते।
1: तो आपने कहा है बातें करनी है, तो मुझे प्रोग्राम बातों बातों में याद आ गया।
0: अच्छा।
1: तो पुरानी यादों में चला गया।
0: हाँ बिल्कुल सही है जी।
1: तो अनिल जी, एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट संडे भी मैं 11:30 बड़ी तो वहाँ वो प्रोग्राम पेश ही नहीं हुआ था लास्ट संडे। ये क्या किया? ये कब आता है ये प्रोग्राम?
0: ये प्रोग्राम कब आता है? देखिए, ये दूसरे और तीसरे, चौथे और पांचवें रविवार को।
1: चौथे और
0: पांचवें रविवार को।
1: ओके, क्योंकि लास्ट में तो प्रधानमंत्री जी की होती है ना जी, लास्ट संडे।
0: हाँ,
1: तो
0: वो मन की बात की वजह से, क्योंकि 12 बजे तक वो प्रोग्राम होता है, तो इसीलिए
1: रेगुलर ही कर लो सर
0: जी।
1: मैंने कहा हर संडे ही कर लो।
0: अच्छा, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है।
1: चलो, सावन का महीना है जी, भोले बाबा के समक्ष बैठ के ऐसे लग रहा है कि मैं याराना फिल्म का गाना सुन रहा हूँ।
0: आहा, क्या बात है, क्या बात है।
1: तो सीन भी याद आ गया, फिल्म भी याद आ गई
0: जी जी जी।
1: आप तो सदा याद रहते हो हमारे दिलों में।
0: क्या बात है, क्या बात है। और सावन
1: भोले
0: का महीना,
1: भोले मेरे यार को मना दे।
0: हाँ,
1: मना दो जी।
0: गुलाटी जी, सावन का जो महीना है ये अपने आप में बड़ा पवित्र महीना माना जाता है।
1: हाँ जी, हाँ,
0: अध्यात्म से जुड़ा ये महीना होता है, जप तप व्रत का ये महीना होता है। तो इस महीने भोले बाबा का नाम तो होंठों पे वैसे चला आता है।
1: बिल्कुल, भोले बाबा की तस्वीर भी इस फिल्म में बहुत अच्छी थी, जहाँ अमिताभ बच्चन सामने वो गाना गाता है
0: जी,
1: तो सारा सीन आंखों के सामने आ रहा है।
0: तो किशोर कुमार का गाया हुआ,
1: आप गाना लगाइए
0: जी, किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना याराना फिल्म से।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। 11:45 हो गए हैं, कार्यक्रम जारी है और बाकी बची जो फिल्में हैं उनके बारे में भी आपको बता दें। अब फिल्में हैं तेजाब, जूली और मौसम। इन फिल्मों के गानों की फरमाइश आप कर सकते हैं और फिलहाल यहां हम छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में हम आपके साथ हैं और जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए बता दें जो फिल्में हमारे पास शेष हैं वो फिल्में हैं तेजाब, जूली और मौसम। तो इन फिल्मों में से आपने हमें अपनी पसंद की फिल्म में से गाना बताना है और उसे हमने प्ले करना है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो
0: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: मैं बोल रहा हूँ अब्दुल रहमान पटियाला से।
0: अब्दुल रहमान पटियाला से?
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: क्या हाल है रहमान भाई?
2: बहुत बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी जी जी। मौसम कैसा चल रहा है पटियाला में?
2: सर ये अब तो बारिश पड़ रही है, 2-3 दिन से यहाँ पर
0: बारिश पड़ रही है।
2: जी जी
0: जी। हमारे यहाँ तो
2: आपको प्रोग्राम सुनते रहते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत ही बढ़िया लगता है।
0: अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा कि हमारे बादल तो आए हैं।
2: जी जी,
0: आते हैं, हर रोज आते हैं।
2: हाँ जी।
0: और एक उम्मीद बंधाते हैं कि हम बरसेंगे। कभी कभी मूड आता तो बरस भी जाते हैं, लेकिन आपके तो अच्छी बारिश हुई है।
2: जी,
0: अच्छी बात है। और लेकिन जब आपका फोन आ जाता है, आपकी हमसे बात हो जाती है, तो अपने आप जो बाहर चली आती है। तो रहमान भाई बताइए कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी?
2: आपकी तो सारी फिल्में आपकी बहुत ही अच्छी हैं।
0: जी।
2: और इससे पहले आपका प्रोग्राम था वो सवाल वाला, वो भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था।
0: जी
2: हाँ, आपको सुना दीजिए जूली फिल्म गाना।
0: जूली फिल्म का कौन सा रोमांटिक गाना सुनना चाहिए?
2: टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग जूली फिल्म से आप सुनना चाहते हैं। और आप करते क्या हैं साहब?
2: जी हम पटियाला में काम करते हैं, टेलर का, सिलाई का।
0: अच्छा,
2: रहने वाले उत्तर प्रदेश रामपुर का है।
0: रामपुर के

0: उत्तर प्रदेश, और वहाँ कभी जाना होता है?
1: जी चले जाते 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में।
0: अच्छा, तो यहाँ काम अच्छा खासा चल रहा है
1: हाँ शुक्र है मालिक का।
0: जी? बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे साथ जुड़े हैं इस,
1: जी आपका प्रोग्राम तो सुबह से लेकर शाम तक सुनते सुनते हैं।
0: सुनते हैं आप?
1: जी,
0: अच्छा,
1: और
0: फिलहाल
1: आप जो
0: हाँ हाँ हाँ और बताइए कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: आप जो शेर नगमा पेश करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगता है वो।
0: जी,
1: आपका शेर नगमा बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए फिर कल भी मिलेंगे शेर व
1: हाँ
0: नगमा
1: हाँ इंशाल्लाह
0: प्रोग्राम
1: कल
0: में। ऊपर वाले ने
1: मिलेंगे।
0: चाहा तो आपसे यूं ही हर प्रोग्राम में मुलाकात होती रहेगी,
1: ठीक है,
0: और
1: नमस्कार।
0: फिलहाल आपकी पसंद पर किशोर कुमार का गाया गाना
1: नमस्कार।
0: जूली फिल्म से।
1: ठीक है, आओ।

किशोर कुमार का गाया गाना भी आपने सुना जूली फिल्म से। और दोस्तों, आपसे बातें करते करते, आपकी फरमाइश पूरी करते करते, अब हम लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ प्रोग्राम जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। यानी वक्त थोड़ा है और फिल्में दो हैं, तो फिल्में जो बची हैं शेष वो हैं मौसम।

0: और तेजाब। अब देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन सी फिल्म का गाना पसंद करते हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। हेलो सिटी ब्यूटीफुल। जी नाम बताइए। जी
2: हेलो ननपंच भाई साहब नमस्कार। जी
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: जिला लुधियाना मुल्लापुर दाखा मंडी से राजेश जैन बिट्टू बोल रहा हूँ जी।
0: जी बिट्टू जी, क्या हाल है आपके?
2: बहुत बढ़िया जी, आपकी कृपा है
0: जी। तो देखिए, कृपा ऊपर वाले की है, हमारा तो प्यार आपके साथ है और आपका हमारे साथ है।
2: हाँ जी
0: जी, तो बताइए आज कौन सी फरमाइश आपकी पूरी की जाए। वैसे तो आपकी
2: फिल्म मौसम का गीत सुनाओ, छड़ी रे छड़ी कहाँ रे खड़ी।
0: अच्छा, छड़ी रे छड़ी कैसी
2: कहाँ रे खड़ी।
0: ओके, ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है।
2: जी सर, गुलजार जी का लिखा हुआ और मदन मोहन जी का संगीत है।
0: चलिए फिर आपकी फरमाइश पर ये गाना पूरा किया जाए।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: प्ले किया जाए, गाना तो पूरा है ही, बस प्ले किया जाए।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल। हाँ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, जल्दी से अपनी फिल्म बताइए, अपनी पसंद का गाना बताइए।
1: हेलो सर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: सर बहुत लास्ट में कॉल मिली है। चलो
0: हाँ,
1: सर गाँव कुतुबपुर सरसाव से निखिल।
0: हाँ निखिल जी, बताइए कौन सी फरमाइश पर गाना पूरा करें।
1: बस आज तो सर एक ही फिल्म रह रही हूँ, उसका ही जो आपकी मर्जी हो वाला गाना सुनवा
0: हाँ,
1: दो।
0: तेजाब फिल्म से गाना निखिल जी की फरमाइश पर हम प्ले कर रहे हैं, तो सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत। और कहाँ से फरमा रहे हैं आप?
1: सर गांव कुतुबपुर सरसावा से।
0: सरसावा से, बहुत अच्छे।
1: जी
0: सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
1: थैंक यू सर।

0: तो दोस्तों, अब आज के इस प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है। फिर इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी किसी और मोड़ पर। तब तक के लिए अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो चीटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
2: ए, क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल,
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
4: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति

0: होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12:05 हुए हैं। अगले प्रोग्राम के लिए हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राजेश किशोर की आवाज थी। सावन कुमार की रचना आपने सुनी, बिपिन सचदेव और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी सुलक्षा पंडित की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आई बाहर आई इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहेगा 6:10 पर पहले हिंदी में, उसके बाद पंजाबी में 6:20 पर।

समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। दोपहर 2:15 पर शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर। नॉन स्टॉप नगमे ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 5:30 पर। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर।

6:30 पर शाम को अमृतवाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

और विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में बाद दोपहर 3:30 बजे नाट्य तरंग प्रोग्राम में नाटक आप सुनेंगे किसी एक फूल का नाम लो भाग दो। ये नाटक है, मूल गुजराती लेखक हैं मधुराय। टॉक शो पिटारा में 4:00 बजे उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में निर्देशिका पटकथा लेखिका

0: पद्म भूषण से सम्मानित सई परांजपे से बातचीत का चौथा भाग आप सुनेंगे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल पृथ्वी चंद की शौर्य गाथा आपसे हम साझी करेंगे। ठाकुर पृथ्वी चंद की शौर्य गाथा। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में सुनिए नाटिका सेंट की बोतल। आज के फनकार प्रोग्राम रात 9:30 बजे फिल्मकार सावन कुमार पर केंद्रित। 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत। ये थी जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया। 17 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 14 अगस्त को देश में विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और हर घर तिरंगा अभियान का आज राज्य स्तरीय शुभारंभ नारनौल से किया। मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मैराथन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ लगाई। विश्व बैंक द्वारा प्रदेश को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के अंतर्गत 5,714.80 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा और शेष 1,714.80 करोड़ रुपए राज्य निधि द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना के तहत राज्य में 48,94,000 एकड़ में 15 क्लस्टर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जल संरक्षित हरियाणा एक प्रमुख एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम है। इसके तहत वर्ष 2026 से 2032 तक 6 वर्षों में विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से 2,484.87 करोड़ रुपए की लागत से 104 नहरों का पुनर्वास किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से 620 खालों का पुनरुद्वार किया जाएगा, जिससे 3,18,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा 120 नहर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, जिससे 56,830 एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में 2,00,000 एकड़ जल भराव वाली भूमि का सुधार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने श्रीमती बंतो कटारिया को हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और रोहतक की पूर्व महापौर रेणु डाबला को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीमती बंतो कटारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री व अंबाला से सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी हैं और अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। वर्ष 1980 से लगातार भाजपा की सदस्य कटारिया देश के नवरत्नों में शामिल गेल की स्वतंत्र निदेशक भी रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को प्रदेश में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत की सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वे चंडीगढ़ में 10 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 2025-26 के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की गति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही न होने दी जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हमारी सड़क मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ऐप पर आमजन द्वारा दर्ज कराई जाने वाली सड़कों के गड्ढों व क्षति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किए गए मरम्मत कार्य की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऐप पर अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण या रिपोर्टिंग में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ठेकेदार तय समय पर काम पूरा नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। भिवानी में कल जिला परिषद की बैठक में विकास कार्यों, वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से लेकर जिला परिषद के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक कई अहम फैसले लिए गए। भिवानी जिला परिषद की अध्यक्ष अनीता मलिक ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। केंद्र ने 20 सितंबर तक पंजाब दियां मंडियां विच पए 18 लख मीट्रिक टन LMT पुराने अनाज भंडार की चुकाई लई सहमति दे दित्ती है, ता जो राज दी संभावित बंपर झोने दी फसल लई भंडार वास्ते थां खाली कीती जा सके। पंजाब वल्लों इस साल केंद्रीय पूल विच 170 लख मीट्रिक टन वधिया गुणवत्ता वाले चौल सप्लाई करन दी उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी ते केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को उठाया अते सहमत हो गए ने। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों नु निर्विघन खरीद अते समय सिर भुगतान यकीनी बनाने लई तैयारियां तेज कर दित्तियां ने। उन्हें यह भी जोर दे के कहा कि किसी भी किसान नु उपज वेचण विच मुश्किल नहीं आएगी। अज जलंधर स्थित डेरा सचखंड बलां विच श्री गुरु रविदास जी बाणी अध्ययन केंद्र दा नींह पत्थर रख्या गया। पदम श्री संत निरंजन दास जी अते होरना ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नाल रल के नींह पत्थर रखण दी रसम निभाई। 24,55,00,000 रुपए की लागत नाल उसारे जा रहे इस केंद्र दे बनन नाल गुरु जी दी बाणी अते उन्हां दे संदेश दा प्रचार प्रसार होएगा। हर घर तिरंगा मुहिम अज तो शुरू हो रही है ते इस महीने की 17 तरीक तक चलेगी। इस पहल का उद्देश नागरिकों नूं राष्ट्रीय झंडा लहराउण अते देशभगती राष्ट्रीय एकता ते भारत दे सभ्याचारक विरसे दा जशन मनाउण वालियां गतिविधियां विच हिस्सा लैण लई उत्साहित करना है। यह मुहिम जो 2022 विच आजादी का अमृत महोत्सव जशन दे हिस्से वजो शुरू हुई सी, देश दीआं सब तों वड्डीआं जनतक हिस्सेदारी मुहिमां विचों इक वजों बण गई है। देश के 80वें आजादी दिवस तो पहला BSF पंजाब ने हर घर तिरंगा मुहिम की अगवाई हेठ फ्रंटियर सदर मुकाम जलंधर विखे एक जीवंत साइकिल रैली कराई। इस रैली नूं IG BSF पंजाब फ्रंटियर डॉक्टर अतुल फुलसले ने BSF कैंपस के अश्विनी स्टेडियम तो हरी झंडी दे के रवाना किया। BSF मुलाजमां ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां समेत 200 तों वध लोक इस समागम विच बेहद उत्साह नाल शामिल होए अते उन्हां राष्ट्रीय माण ते एकता दा संदेश फैलांदे होए नागरिकां नूं आजादी दिवस दी भावना दा जशन मनाउण लई उत्साहित कीता। इस रैली जलंधर ते प्रमुख स्थानां विच लंघी, आम जनता वी इस च शामिल होई अते आजादी दिवस ते तिरंगे दी महत्ता बारे जागरूकता पैदा कीती गई। पंजाब विच अज तड़के सरहंद जीटी रोड ते कार की टक्कर नाल तीन कांवड़ियां की मौत हो गई ते गंभीर रूप च जख्मी हो गया है। ये कांवड़िए उत्तराखंड ते गंगोत्री तो पवित्र जल लैके पंजाब ते फरीदकोट जिले ते कोटकपूरा परत रहे सन। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया अते मौके तो फरार होने वाले ड्राइवर का पता लाने दी कोशिशां जारी ने। सरहदी सुरक्षा बल BSF ने अमृतसर विच भारत पाकिस्तान सरहद ते घुसपैठ की कोशिश नूं नाकाम करदिआं एक शक्की व्यक्ति का खात्मा कर दिता है। बीती देर रात 181वीं बटालियन के जवानों ने अमृतसर के BOP दौके थाना करिंडा इलाके विच सरहदी वार्ड के नेड़े एक अणपछाते व्यक्ति वल्लों शक्की गतिविधि देखी जो पाकिस्तान वल जा रहा सी। जवानों ने उसनूं रुकण की चेतावनी दी पर उह भारतीय खेतर तों पाकिस्तान वाले पासे सरहदी वाड़ वल वधरा रहा। खतरे नूं देखदिआं BSF दे जवानां ने गोलीबारी कीती जिस विच शक्की व्यक्ति मौके ते ही मारिया गया। मृतक दी पछाण अते सरहद पार करन ते उस दे उद्देश लई फिलहाल

0: जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही ने। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग जलंधर दी गन्ना शाखा वालों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम तहत सहकारी शुगर मिल भोगपुर नाल संबंधित गन्ना खेतर ते पिंड रहीमपुर जलंधर विखे किसान जागरूकता कैंप लाया गया। इस कैंप विच माहिरां वालों गन्ने दीआं काश्तकारी तकनीकां कीड़े मकौड़ियां दी रोकथाम रोग प्रति प्रबंध ते किसानां दी भलाई लई चलाईआं जा रहीआं वख-वख सरकारी स्कीमां बारे किसानां नूं जानकारी दित्ती गई। मौसम विभाग ने अज पंजाब विच कुछ थावां ते भारी बारिश दा येलो अलर्ट जारी कीता है। पंजाब विच तिन्ना जिलियां विच भारी बारिश दी चेतावनी जारी कीती गई है। उन्हां विच होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, बरनाला ते बठिंडा शामिल ने। जम्मू कश्मीर विच हाल ही विच हुई बारिश तीर्थ यात्रा दे ट्रैक दी मरम्मत दे काम ते अगले कुछ दिनां विच खराब मौसम दी पेशीनगोई दे मद्देनजर अज तों पहलगाम ते बालटाल दोवां रूटां ते सलाना अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म होईयां। साडा xhandle@AIRNU जलंधर साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 1:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, मिलकर आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गानों का। सबसे पहले लता मंगेशकर भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में गाना आपको सुनवाते हैं, मौसम ये फिल्म है, गुलजार के बोल हैं और ये गीत है लता मंगेशकर भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। मदन मोहन के संगीत में ये गीत

मदन मोहन के संगीत में अभी आपने भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत सुना। ये फिल्म थी मौसम, गुलजार के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत विविध भारती चंडीगढ़ से। अभी मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं।

0: अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सलामी फिल्म से ये गीत सुना। यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
3: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
2: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
3: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
2: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
3: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
2: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
4: अच्छा बच्चियों, तो हनु सारे नु पता है ना 10 अगस्त नु स्कूल आना क्यों जरूरी है?
5: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानु आन दे कीड़ियां नु खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
4: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उन्हां नु 17 अगस्त नु मॉप अप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
5: अच्छा मैडम जी।
4: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नु नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
5: हां जी मैडम जी।
6: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा, होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नज़रिए से, तो प्रदेश है। यहाँ पर हैं अलग अलग, तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ

ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब हो गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म की किताब में सुनारीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओ जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओ जो जोंगो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं,

काइंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है, तो नैना क्यों बरसे, बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात में रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आरडी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्माया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नज़र नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाएँ तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नज़र आता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं,

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैसंजाम दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोता। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलहदा है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी, ये धरती नीले आसमान को ओढ़े ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियाँ ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

मालिनी पर फिल्म आया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहाँ का नज़ारा। जी हाँ, पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता

ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं, और संगीतकार

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोता, वो रावण हत्था है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के।

शरद भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं हैं, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल से 170 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है, वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। जी हाँ, पंचमढ़ी तो बड़ी सुंदर जगह है। और आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

सो नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीज़ों से भरें जो मायने रखती हैं।

0: थोड़े से बदलाव लाने होंगे, क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफ़रत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और ख़ुद को दूसरों से कम या ज़्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं।
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे, तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना

0: आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का सम्मान करना सिखाएं।
1: नफरत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ BR आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
3: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एज वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्र

0: दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में

0: 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक

0: और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें थीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और महराज जहानी। इन्होंने लिखा है आज़ाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशि कला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमा ताई, सीमा ताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, सहल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है ये। बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता ने बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जीतेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोताओं रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार, और ज़रूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: नहीं, आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते
3: हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते?
3: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन

0: लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
1: प्रीतम सोनी,
0: कौन?
1: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
0: नहीं।
1: लेकिन क्या ये सच है?
0: कामी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनता किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
1: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
0: नहीं।
1: बोलो।
0: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
2: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
3: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
2: क्या मतलब?
3: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
2: ये बात और कोई भी जानता है?
3: नहीं।
2: पाठक भी नहीं?
3: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
0: तुम्हारी बात सही है कामनी। प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है। और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर, वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कामनी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है। पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
4: ओ, ये कौन आ मरा इस समय? कौन है?
5: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
4: क्या
5: है? गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
4: ओ हाँ।
5: नमस्कार कामनी जी।
3: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
5: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
4: तुम जरा जल्दी आ गए।
5: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही

0: नाटकी काफी था। ठीक है तो मैं जाऊं।
1: सिगरेट पीजिए, चलती थी क्या है?
0: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
1: बैठिए बैठिए, क्यों जल्दी है?
2: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
0: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ, कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
2: हमारी निजी बातें थी।
0: निजी बात? हाँ, समझा। आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी। जी,
2: छिप छिप कर बातें सुनते हो, बदतमीज।
1: क्या हुआ केशव जी?
0: जी,
1: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
0: जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
2: क्या? तुम जानते हो?
0: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
1: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
0: अजी, तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
1: होगा कोई, छोड़िए, नाटक पढ़िए ना।
0: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
1: वाह, कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
0: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
2: आत्मकथा लिख लाए हो?
0: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ, वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
2: ये क्या झमेला है?
0: हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
2: क्या कहा?
0: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
2: तो तुम जानते हो?
1: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
0: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे, हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ, सालों गुजर गए। 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए, भी किस पछड़े में मैं पड़ गया। हाँ अजी, वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
1: हाँ हाँ, पढ़िए ना।
2: नहीं, पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
0: शेखर खोसला? हाँ, शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था। हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका, और फोटो के साथ।
2: अच्छा?
0: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
2: उम्र क्या है?
1: सुंदर, तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
2: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
0: और वो कहता था, अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
1: और क्या?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
2: क्या
0: के शेखर इन पर

0: खोसला का रंग कैसा है?
1: जी गोरा।
0: रंग गोरा है,
1: गोरा।
0: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा, वो आदमी कैसा है?
1: अजी बहुत चालाक।
2: उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
0: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
2: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
0: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
1: अच्छी बात है।
0: और इस तरह अपने पास बैठा कर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
4: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
5: हाँ भाभी।
4: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
5: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
4: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
5: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
4: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
5: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
4: वो अफ्रीका से लौट आया है?
5: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
4: अरे कैसा है?
5: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
4: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
5: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
4: अरे
5: नहीं आता।
4: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
5: भाभी आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एक-एक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम

0: ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई।
1: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामिनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा। अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
2: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मारकर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
3: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
4: हाँ, जानता हूं, लेकिन उसी अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
5: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है, ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे।
4: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
0: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
4: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
0: नहीं, उसका एक दोस्त है।
4: कैसे परेशान कर रहा है?
0: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
4: मतलब
0: वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
4: और तुम ये सब ना मानो
0: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
4: उस आदमी का नाम क्या है?
0: शेखर खोसला।
4: शेखर खोसला?
0: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
4: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
0: क्यों?
4: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
0: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। चतुर स्वार्थी नीच कंगाल,
4: एक शब्द भी और कहा तो गला घोट दूंगा।
0: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
4: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण ने मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सच में जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए

0: पिता मैं हूं।
1: शेखर खोसला को आप जानते हैं, केशव ठाकर आप चुप क्यों हैं? बोलिए शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
2: ये आवाज कामनी को सजा हो गई। शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूत किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
3: केशव जी,
2: कहले जी,
3: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
2: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
3: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
2: और क्या?
3: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
2: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
3: बड़े गहरे हैं कवि जी,
2: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था। और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
3: सुनिए कवि जी,
2: जी
3: कल शो है ना?
2: हाँ।
3: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
2: जी।
3: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
2: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
3: कवि जी।
2: जी जी।
3: आप आ गए।
2: मैं बिल्कुल आ गया।
3: खेलिए पहली पंक्ति के तो
2: टिकट
3: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
2: टिकट किस लिए?
3: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
2: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
3: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखो आपके उस खूबसूरत चित्र को।
2: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
3: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
2: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। जेल में मैं उसे देखने गया।

0: मैंने ने उसे अजीब हालत में पाया।
1: शेखर खोसला
0: जेल की कोठरी।
1: हाँ पूरा सच,
0: बकली
1: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
1: शेखर खोसला झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हो? जवाब तो हाँ या ना। रात को गर्माई मिली है जिसे तुम गायर प्रेमी चट्टो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। शेखर मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें जानती हूं। मैंने तुम्हारी पूरी पत्तियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें, कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों हो, चुप क्यों हो शिखर? जवाब तो उससे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो शिखर, मुझसे बातें करो।
2: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया। एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं। कथा फिल्म

0: का प्लॉट कहां से आया था?
1: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
0: एक किसी और जगह से आया।
1: हाँ, बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे रादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी, लेकिन उसकी जो ये थी, क्या कहते हैं, अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही, हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
0: दिखावा क्या है,
1: ये दिखावा क्या है, ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है। और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है, इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो। फिर किया जो मर्जी किया मैंने, और पूरा ही वो बदल दिया उसमें सारे कैरेक्टर्स। वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किस्से सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
0: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
1: आपको मालूम है, वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि ये सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल्स हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में, इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामिया मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी, और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी, और मुझे लगता है चौल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग, बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
0: बहुत सुंदर बात, हाँ। वाह,
1: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
0: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है,
1: हाँ।
0: वो भी बताइए।
1: कौन सी?
0: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
1: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए अभी तक, वो कुछ 58 चार्ज होता, तो क्या अब
0: एक बार की सलाह पे 58 यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
1: हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
0: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए?
1: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
0: शरारती भी
1: और दूसरे पे हावी होने वाला, हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर

0: विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला। और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया मजा आ गया, कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अफसाइड। तो नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम? डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,
0: बहुत

0: और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
1: वाह, ये भी बात है। हाँ। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
0: जी।
1: और वो रस्सा कशी का खेल हाँ, हो रहा हाँ, था हाँ। वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना। तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में वो कथा का हिस्सा बनती जाती है।
0: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
1: हाँ। हाँ?
0: इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे और उनका गेंद क्या है, एक रिंग है और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
1: क्या
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह,
0: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
1: रोंगटे खड़े हो गए।
0: इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
0: जी।
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं, क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चौल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी, एवरीथिंग इज फेक। तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है।
1: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहां कहां नहीं घूमे हम। तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ ना कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बम्बई की चौल पुणे में क्यों। तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है। मैंने कहा हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुगी के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पुणे में। तो वो बढ़िया चौल थी और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल के बीच में आंगन और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेज और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से। और फिर इतनी वो सुंदर चौल और वो क्या चौल वाले और वहां के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पुणे की साड़ुंग के चौल कथा फिल्म में बम्बई

0: चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
1: कौन सा,
0: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
1: प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
0: क्या बात है, कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
1: जी।

0: दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर, पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई
0: जी
1: उनके गांव में,
0: नायगांव
1: गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा, सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया, उन्होंने कहा अच्छा एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा

0: पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा नमस्कार, बड़ी खुशी हुई, सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मैके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलास राव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर।
1: इंसान के जुझारूपन की मिसाल,
0: जुझारूपन की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी,
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ मतलब उसकी सौत।
1: तो,
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी।
0: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी, मैंने कहा है पड़ी है, कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे, मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके, कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या कहाँ काम आएगी, कहते गाड़ा गाड़ा, गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम हाँ बम्बई में रहकर। मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब, कहती चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहां वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा सकरा,
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में हाँ। तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, 4 जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुत लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई खड़ी रह गई। फिर उसने कहा अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का, वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा तो फिर आपको सिर्फ 6 फुट जगह मिलती है, कहते हाँ ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो।

0: मैंने कहा मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वाज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो उनके साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तंबाकू ऐसे
1: उड़
0: रहा है और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तंबाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4th-5th फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए। एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शबाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम।
1: हाँ, वो आपने खुद लिखा है?
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात है।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी।
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी.एस. भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या तो बात,
0: दोनों ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी।
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड सही, आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई विल गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना अपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर

0: वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका आता है लेकिन उसने हराया। यस, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए। नहीं, वो सही लगता है, अपनी जगह पे उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूँगी देख लूँगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में, अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा, स्क्रिप्ट ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से, मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी, तू तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया गया और सब हक्का बक्का, अंदर सात आठ लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो निकल गया चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था और हाँ। वो ये कर सकता था, बिल्कुल कायदे से कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली, काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: मतलब क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी।
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का, मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा गुजरा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत।
0: एंड नाना लॉफ्ट एंड आई गॉट अ

0: स्टैंडिंग ओवेशन, सब
1: जी
0: लोग उठ के तालियां बजा रहे, और नाना ने जो मुझे जब पिलाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है। उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, हाँ, इसलिए आप बच गई,
0: हाँ,
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रहे हैं।
0: मैं कि हे भगवान, मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी। क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बदूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है

0: है वो दिशा के ही है
1: जी।
0: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
1: वाह वाह वाह,
0: सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, कहता है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया। हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ कद्दू की माँ, वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे, पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम, मुझे मालूम ही था, पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, he's gone mad। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटुरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
1: माथे
0: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी, तो और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई।
1: छोटा बच्चा कहता है कितना सुंदर, कितना सुंदर।
0: तो दैट्स व्हाई आई जस्ट लव दिस फिल्म, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी true film and it keeps you absorbed and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense, I mean you know, usme bahut hansi mazak bhi hai, bahut human give and take hai।

0: बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई,
1: छोटा बच्चा कहता है कितना सुंदर है, कितना सुंदर।
0: तो दैट्स सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस। आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है। दिशा
1: जी, एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
0: हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना भी अब पहुंच गया है। नाना मतलब वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह। तो बापू का पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
1: जी,
0: हाँ
1: जी,
0: ग्रेट कॉमेडियन। तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, होता है कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है। तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
1: जी,
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं। तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, जिसे और कुछ तो चारा होगा। तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आए ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहता है लेकिन जगह कहाँ है। तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे हा? तो टॉप शॉट था और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं हा? और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे इट्स अ ब्यूटीफुल इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले, मतलब ये या चाहे की प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है ठीक। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य, राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत थी
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य हाँ जंगल और आदिवासी इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, बड़ों के लिए एक परिकथा। हाँ,

0: अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिन गुना जी, देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडीइंग
1: समाज मानवी की,
0: हाँ लेकिन आदिवासियों की, शी स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है, और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल, तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली, तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग हैं थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग हैं, तो क्या करे फिर, बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट, फिर सोचा कि कह तो रहे हैं कि ये परिकथा है बड़ों के लिए
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक अ लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस, and tribals have a very unique common factor, they're all very innocent, they're all very believing, and they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving, to ye sab jo hai to wo sab leke humne tribals to bana diye, aur jungle ko bhi jhooti puti ka jungle kiya, mantarban naam diya jungle ko mantarban
1: ji,
0: aur phir bhasha kya kare, phir ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था, तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें,
1: फिर
0: हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के, तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, सही भाषा थोड़ी ना
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला, मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत है, तो एनीवे तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन
1: जी,
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
1: जी,
0: और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स,
1: ये गाना सुनते
0: जी क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव फलाना ढिमकाना। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। सो आई सेड आई वांट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी, बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी है वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगा। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ,
1: पपीहा बनाओ, और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या क्या? ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कम साल हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड यस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, he said I was his number one supporter. So and we saw to it that you lost. So I said acha to ye hai wagaira, fir badi hansi mazak ki baatein hui. He said acha to mujhe ab kuch papak shalan karna chahiye. I have to make up for that. So I said ha karo. He made everything possible.

0: wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. Kya nahi bolo, and permission everywhere. Tadoba jana hai, jao. Sanjay Gandhi Udyan, jao. Mahabaleshwar jana hai, jao. Nagjira jana hai, jao. You know, so we shot all over. Fantastic. And it really went out very well.
1: Kya baat hai.
0: It's sad that the film didn't... People have not seen it so much.
1: जी जी जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए. आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है. मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाएं.
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी. और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है.
1: हाँ,
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी. तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें. मैंने बहुत तफसील से लिखा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है.
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर सा.
1: जी, जी.
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म. हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है.
1: जी.
0: तो पैचवर्क क्विल्ट. और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ. आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है. एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात.
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है. हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे.
0: लवली,
1: क्या नाम होगा.
0: आई लव टू हियर व्हाट दे फील. आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.
1: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ.
0: जी,
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था. तब मैं बहुत नया था.
0: हाँ.
1: और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ.
0: तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे आप डरते रहिए, अच्छी बात है. ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है.
1: जी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर,
1: आगे कभी बात करेंगे.
0: तो किए ना.
1: मुझे पता नहीं,
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की. थोड़ी ज्यादती है इतने
0: अच्छा
1: सारे सवाल कर. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार. गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया. पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमशिवयम, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीएनएस राजशेखरन और पुदुचेरी भाजपा के अध्यक्ष वीपी रामलिंगम भी इस अवसर पर उपस्थित थे. हजारों लोगों ने इस रैली में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया. इससे पहले श्री शाह गोरीमेदु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए. पुदुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है.
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है. पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा,

0: पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में चीनी के भंडारण की स्थिति, उत्पादन और आवश्यकताओं का आकलन किया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत और पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म से, बोल साहिर के और संगीत से सजाया है रवि ने।

आंखें फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

0: रहेंगे चुपचाप तुम्हारी पूजा कोई फल।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब एक गीत इंतकाम फिल्म से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉगिन नरिश। सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक है क्या आखिर। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जाने बॉडी और

माइंड के लिए कुछ पौष्टिक भोजन के बारे में। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बॉडी और माइंड को हेल्थी रखने के लिए किन किन पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहना चाहिए, तो फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? शायद इस सवाल के जवाब में आप एक नहीं बल्कि कई भोजन का नाम लें। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे भोजन हैं जो हमेशा ही बॉडी और माइंड के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आप पौष्टिक भोजन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रोग्राम में तो मैं चेतन आपको कई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्स करके आपके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में अगर सबसे अच्छा और पौष्टिक भोजन माना जाता है तो उनमें से एक है घी, क्लैरिफाइड बटर। इसका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। प्राचीन काल से लेकर मौजूदा समय में घी को एक आयुर्वेदिक आहार भी माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी और माइंड के लिए घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि उचित मात्रा में लेना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो कई ड्राई फ्रूट्स हैं जो पौष्टिक आहार में शामिल है, लेकिन बॉडी और माइंड के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स में से एक खजूर को भी माना जाता है। ऐसे में आप नियमित तौर पर खजूर को भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। खजूर के साथ साथ अंजीर को भी आहार में शामिल कर सकते हैं। खजूर और अंजीर के अलावा भी ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिन्हें आप आहार में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बॉडी और माइंड के लिए पौष्टिक भोजन में अंगूर के साथ साथ कटहल और केले को भी शामिल कर सकते हैं। ये तीनों फल आयुर्वेद की नज़र से सेहत के लिए हमेशा से बेहतरीन आहार माने जाते हैं। इसके अलावा दूध को भी आप आहार में शामिल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स घी, खजूर, अंजीर, अंगूर, कटहल आदि चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ों को भोजन में शामिल करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सूप के साथ काला चना, गुड़, चावल और आंवला आदि चीज़ों को भोजन में शामिल करते रहना चाहिए। पौष्टिक भोजन शामिल करने के साथ साथ एक्सरसाइज और मधुर संगीत सुनने की भी सलाह देते हैं। अगर आपको ये लम्हे प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप ध्यान से सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बेहतर डाइट लें, तभी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, साथ ही कई बीमारियों के खतरे से दूर रह सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही वजह है कि हमें हमेशा पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए। अच्छी डाइट के मदद से हमारा शरीर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। अक्सर ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें तमाम बीमारियों की चपेट में आना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को बेहतर बनाने के साथ उस पर कंट्रोल रखते हैं वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं कि ऐसा कौन से सदाबहार पौष्टिक आहार है जिसका सेवन कर आप लंबे समय तक फिट रह सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दूध एक ऐसा विकल्प है जिसको आप बचपन से पीते आ रहे हैं, बड़े होने के बाद भी आपको फिट रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूध एक तरह से संपूर्ण आहार है जिसमें मिनरल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की काफ़ी मात्रा होती है। आप रोज़ाना नियमित रूप से अगर दूध पीते हैं तो इससे आप फिट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फल बहुत ही फायदेमंद माना जाते हैं। आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। जरूरी

नहीं है कि आप एक ही फल पर निर्भर रहें। आप बदलते मौसम के साथ मौसमी फल का सेवन जरूर करें। आपको हर प्रकार के फल खाना चाहिए। सभी फलों में अपने अपने गुण होते हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। फलों में केला एक ऐसा फल माना जाता है जिसे आप रोजाना नियमित रूप से खा सकते हैं। आप चाहे तो केले को दूध के साथ भी खा सकते हैं। यह आपको हेल्थी रखने के लिए काफी उचित है। ताजी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत अहम होती है। नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से हमें हर प्रकार का पोषण मिलता है और हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। आपको बता दें कि हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़ते वजन को कम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं, कैंसर आदि से लड़ने में सहायक होती है। रोजाना आपको एक मुट्ठी भर नट्स खाने से आप दिन भर तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे। नट्स में खासतौर पर बादाम और अखरोट ज्यादा महत्वपूर्ण है। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और खून भी बढ़ता है। साथ ही बादाम के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा वसा पाया जाता है जो शरीर के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इसमें रेशा होता है जो शरीर से वसा को जलाकर उसे स्वस्थ और एक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। दैट वॉज द टॉपिक नॉकिंग नरिश इन लम्हे प्रोग्राम एंड दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त रमन। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस गीत के साथ।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

दोस्तों, आज के प्रोग्राम नॉनस्टॉप नगमे में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको बताते हैं उन फिल्मों के नाम जिनके गीत आज हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किए। वो फिल्में थीं मैंने प्यार किया, दिल है तुम्हारा, क्योंकि और मुस्कान। तो अब अपनी रेडियो दोस्त रमन को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम नॉनस्टॉप नगमे को यहीं ख़त्म करने की। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल

0: शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी थे चंडीगढ़ केंद्र तो हुन तुसी सुनोगे एक फिल्मी गीत, ते गीत गोलमाल फिल्म तो किशोर कुमार दी आवाज़ विच।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और हर घर तिरंगा अभियान का नारनौल से शुभारंभ किया। नारनौल में यूथ मैराथन के विजेताओं को 25,000 से 1,00,000 रूपये तक के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलवल और कैथल में प्रदर्शनी लगाकर तिरंगे के बारे में जानकारी दी गई। फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही पवित्र कलश वंदन यात्रा का घरौंडा में स्वागत किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ नारनौल से किया। मुख्यमंत्री ने नारनौल के नूनी शेखपुरा मोड़ पर यूथ मैराथन व तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नशा मुक्ति का संदेश दिया। हजारों युवा हाथों में तिरंगा लिए यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 किलोमीटर दौड़ में शामिल होकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की नई चेतना जगाई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी को उन बलिदानों से परिचित कराएं जिनकी बदौलत हमें यह आजादी मिली है। हमने संकल्प लिया है कि हर तिरंगा अभियान को हरियाणा के गांव-गांव और हर

0: घर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी विभाग, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज मिलकर इसे जन आंदोलन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह मैराथन केवल कुछ किलोमीटर की दौड़ नहीं है, यह स्वस्थ जीवन और नशे के अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और मैराथन के पुरुष एवं महिला विजेताओं को 1,50,000 और 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद धर्मवीर सिंह, नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव, यूथ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर व राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शर्मिला धनखड़, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पंकज नैन और उपायुक्त अनुपमा अंजलि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार में एक निजी स्कूल के नए भवन, आधुनिक कक्षाओं व अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
1: हमने एक नए डिपार्टमेंट का साथ निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने एआई मिशन की भी स्थापना की और साथियों, इस एआई मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित करने का भी निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। मुझे खुशी है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में अटल टैंकरिंग लैब स्थापित की गई है। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाई फाई से जोड़ने का काम किया गया है।
0: उन्होंने कहा कि 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 1,420 प्राथमिक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हर खंड में एक पीएम श्री स्कूल खोला है। इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि हर 5 किलोमीटर पर पीएम ट्रिपल ई स्कूल उपलब्ध होंगे, ताकि पहली क्लास से बच्चे कौशल संपन्न हो सकें। उन्होंने अपने संबोधन में खेल नीति और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धि का उल्लेख भी किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जींद शहर में भी तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। रानी तालाब से शहीदी स्मारक तक निकाली गई इस यात्रा को उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज थामे हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा के मार्ग में आमजन ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान, गौरव और एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने तथा आमजन को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पलवल जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज बस स्टैंड पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। पलवल में हरियाणा परिवहन के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में तिरंगे के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।
2: प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को अपने झंडे के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से झंडे का सम्मान करना है, किस प्रकार से ध्वजारोहण करना है, किस प्रकार से इसका निस्तारण करना है, सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं। मैं अपील करूंगा लोगों से ज्यादा संख्या में आए, यहाँ पे सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है, अपनी सेल्फी भी लें और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ से लेके जाएं और अपने साथियों को भी बताएं।
0: कैथल लघु सचिवालय में भी जिला प्रशासन द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदर्शनी लगाई गई। कैथल में भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में तिरंगे के गौरव, देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश में शुरू हुए घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य हर व्यक्ति में देश प्रेम की भावना को प्रबल करना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा

0: रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। अंगदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए देशभर में 16वें भारतीय अंगदान दिवस पर जुग जुग जियो अभियान शुरू किया जाएगा। आज इसी उपलक्ष्य में फरीदाबाद स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंगदान एवं देहदान से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूकता एवं जिज्ञासा समाधान सत्र के दौरान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डीन डॉ चौहान दत्तात्रेय कालिदास दधीची देहदान समिति से श्री राजीव गोयल, डॉक्टर हेमंत अत्री, डॉक्टर सांची श्रीवास्तव तथा डॉक्टर मंजू प्रभु ने लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, फरीदाबाद नगर निगम की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज संजीव राजपूत तथा पैरा ओलंपियन कंचन लखानी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। डॉक्टर मंजू प्रभु ने मीडिया को बताया,
1: चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अपने प्रथम वर्ष में शरीर क्रिया विज्ञान सीखना होता है जो वो मृत शरीर पर सीखते हैं। ऐसे ही बहुत लंबी सूची है हमारे देश में जिनके अंग खराब है और अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, या दृष्टिबाधित जीवन चल रहा है, कॉर्निया प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, नेत्रदान, देहदान या अंगदान का संकल्प हम जीते जी लेते हैं और इसका एग्जीक्यूशन परिवार करता है। तो परिवार और समाज में इन विषयों की जानकारी रहे, आज एसआई मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया।
0: कार्यक्रम के दौरान 108 पौधों का रोपण भी किया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं पावन जयंती के उपलक्ष्य में काशी स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से प्रारंभ हुई। पवित्र कलश वंदन यात्रा आज घरौंडा विधानसभा के गांव कंबोपुरा पहुंची। संत श्री रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। श्री हरविंदर कल्याण ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का जीवन मानवता, समानता, सामाजिक समरसता और निष्काम सेवा का प्रेरणा स्रोत है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और हर घर तिरंगा अभियान का नारनौल से शुभ आरंभ किया। नारनौल में यूथ मैराथन के विजेताओं को 25,000 से 1,00,000 रुपए तक के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: अच्छा बच्चियों, तुहानू सारे नू पता है ना 10 अगस्त नू स्कूल आना क्यों जरूरी है?
1: हां जी मैडम जी, क्योंकि उस दिन पेट दे कीड़ियां तो राष्ट्रीय मुक्ति दिवस है। ते सानू आन दे कीड़ियां नू खत्म करन लई दवाई दित्ती जाएगी।
0: ते जेड़े बच्चे रह जानगे उनानू 17 अगस्त नू मॉप अप दिवस दे दिन दवाई दित्ती जाएगी।
1: अच्छा मैडम जी।
0: हां जी, दवाई दे नाल नाल आंत दे कीड़ियां तो बचन लई ध्यान रखो के खुले च कदी भी शौच ना जाओ। खाना खान तो पहला अते शौच जान तो बाद हमेशा हाथ साबण नाल धोवो। अपने हाथ दे नाखून छोटे रखो अते आस पास सफाई रखो। याद रखो, जेड़े बच्चे दे आंत विच कीड़े हुंदे ने ओ जो भी खांदा है उस दे शरीर नू नहीं लगदा, इस करके बच्चा कमजोर रह जांदा है। बच्चियो, ए सारियां गल्लां याद रहणगियां ना तुहानू?
1: हां जी मैडम जी।
2: आंत दे कीड़ियां तो छुटकारा होवे सेहतमंद भविख साडा। नेशनल हेल्थ मिशन सेहत ते परिवार भलाई विभाग पंजाब वल्लों जनहित विच जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। देशभगति ते राष्ट्रीय एकता दा जश्न मनाउण लई अज देश भर विच हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिचेवाल ने समाज सेवी भगत पूरन सिंह जी नूं देश दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नाल सम्मानित करन दी मंग बारे प्रधानमंत्री नूं पत्र लिखिआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जलंधर के डेरा सचखंड बल्ला विखे श्री गुरु रविदास पाणी अध्ययन केंद्र का नींह पत्थर रख्या। मौसम विभाग ने अज पंजाब कुछ थावां ते भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। भारत की अश्मिता चलीहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व

0: दिवस तो पहला बीएसएफ पंजाब ने हर घर तिरंगा मुहिम की अगुवाई हेठ फ्रंटियर सदर मुकाम जलंधर विखे एक साइकिल रैली करवाई। इस रैली नूं आईजी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर डॉक्टर अतुल फुलझेले ने बीएसएफ कैंपस के अश्विनी स्टेडियम तो रवाना किया। बीएसएफ मुलाजमान ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां समेत 200 तो वध लोग इस समागम च बेहद उत्साह नाल शामिल होए ते उन्हां राष्ट्रीय माण ते एकता दा सुनेहा फैलाउंदे नागरिकां नूं आजादी दिवस की भावना का जश्न मनाउण लई उत्साहित किया। पंजाब पुलिस वालों आजादी दिहाड़े के मद्देनज़र पिछले कई दिनों तो सुरक्षा पक्षों सूबे भर च सख्त प्रबंध किए जा रहे हैं। इस तहत सरहदी जिला गुरदासपुर के दो पुलिस जिले गुरदासपुर ते बटाला च फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। बटाला पुलिस के डीएसपी तजिंद्र पाल सिंह ने इस बारे दस्या।
1: ਅੱਜ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं। HIV एड्स संक्रमण

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: कि एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
6: कार्यक्रम का अगला गाना

आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी 4 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार

0: का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत

0: में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
2: कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नाम फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अद्धी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: आइए अब सुनते हैं काला पत्थर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत राजेश रोशन का।

में है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रही हैं महबूबा विविध भारती पर सुन जरा। 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में साजन की सहेली फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत उषा खन्ना का।

0: आइए अब सुनते हैं जुनून फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों।
1: तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम आपके लिए यह आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोतियों हुन पेश है प्रायोजित प्रोग्राम कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग को की तरफ से।
2: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीज़न कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें

0: कहता है, नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमज़ोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी हैं जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सकें। हमारे पास अन्य कानून भी हैं, जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहाँ की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए, पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएँ बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज़ हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुज़ुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे स्टेट ने बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको रीएम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व

करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा, वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें

0: कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस टॉक वॉज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। श्रोतियों थोड़ी देर च होएगा साडा अगला प्रोग्राम आज के फनकार। इस प्रोग्राम नु आकाशवाणी दे मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।
3: दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। यह फिल्म

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्ब

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

श्रावण कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आए। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। महक रही है जमीन चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है।

उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।

उदास आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पे बहुत खामोश बैठा है, तुम्हारे शहर के सारे दरीचे तो सो गए, लेकिन हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है।

0: फिर याद आए।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद कर।
1: हम अभी हाजिर हुए

उन्हें कभी मत बताना मैं उनकी आंखों में हूं। वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं, उदास आंखों पे आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं।

याद किसी की चांदनी बन कोठे कोठे उतरी है, याद किसी की धूप हुई है, जीना जीना उतरी है।

0: आज के छायागीत में थे सैक्सोफोन पर आधारित कुछ गाने। इन सभी गानों में मनोहारी सिंह ने सैक्सोफोन बजाया। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: दुनिया उसे के जमाना उसे का।
0: फिल्म कश्मीर की कली, एस एच बिहारी, ओ पी नैयर।
2: आगे भी जाने न तू।
0: फिल्म वक्त, साहिर लुधियानवी, रवि।
3: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ।
0: फिल्म संजोग, राजेंद्र कृष्ण, मदन मोहन।
4: आवाज देके हमें तू बुला।
0: फिल्म प्रोफेसर, हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन।
5: बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है।
0: फिल्म आरजू, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।
6: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
2: प्रोग्राम सुरसांझ दा अगला गीत आउसुंदे आ मिस पूजा दी आवाज़ विच।

0: ਸਰੋਤਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
2: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਗੀਤਾ ਸੈਲਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।

0: ਸਲੀਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤ ਰਮਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਿਓ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

0: नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ।